0: बच्चे लोग, तुमने कभी काला ताजमहल देखा है?
1: क्या, क्या, क्या?
0: कभी बिना पानी का समंदर देखा है?
1: नहीं तो।
0: रसगुल्ले से रसगुल हो जाए तो पता है कैसे दिखता है?
1: कैसा, कैसा, कैसा?
0: वो देखो, जीता जागता नमूना मिस शिवानी।
2: ए, ए, ए, क्या लगा रखा है ये सब? क्या लगा रखा है?
0: अरे बोर हो रहे हैं यार, कुछ तो मस्ती करने दो, कुछ तो करो, कुछ तो करो, अरे कुछ तो करो यार।

दिन सब हो गए हैं गोविंदा के संग। अरे समझे, समझे।

0: Mirchi Mornings.
1: Mirchi Mornings. It's hot.
2: 89.6.
1: Mirchi One. It's hot. Mirchi. Fresh Mal.
3: इमरान हाशमी के सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट हिट्स दोनों का रिश्ता पुराना है. उनकी अगली म्यूजिकल ऑफरिंग है ये आवारापन.

0: इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: हेलो
2: हेलो
1: हेलो बहन जी।
2: हाँ जी।
1: ये एक सेकंड, ये बहन जी हम आपके पड़ोस में रहते हैं, ये मेरा एक्चुअली बच्चा बहुत रो रहा है और मेरी वाइफ का फोन लग नहीं रहा है, वो बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है। अगर
2: आप... आपके घर में कोई नहीं है?
1: नहीं, वाइफ है, वो गई हुई है कहीं, तो आप थोड़ा सा, आपको अगर कुछ मालूम हो तो एक सेकंड।
2: आप अपनी वाइफ को फोन करिए ना, उन्हें बुलवाइए जल्दी।
1: नहीं नहीं, मैं उनको ही फोन कर रहा हूँ, एक सेकंड। आली है मामा आएंगी, मामा आएंगी, एक सेकंड बहन जी आप होल्ड करेंगी, एक सेकंड सर। आएंगी मामा आएंगी, चीजी लाएंगी बेटू, चीजी लाएंगी। नहीं चुप हो रहा, आई एम सो सॉरी, आपको भी डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं ऐसे।
2: नहीं, इसमें डायपर पहना है तो चेक करिए, गीला तो नहीं है?
1: एक सेकंड, इधर आओ। हाँ इधर आओ, देखो मामा आ गई, चीजी लाई। हाँ डायपर गीला है बहन जी इसका,
2: उतार लीजिए उसको।
1: एक सेकंड रुकिए, ये इसके गले में अटक रहा है डायपर। एक सेकंड,
2: शायद आप बेब उतार रहे हैं उसका।
1: अच्छा ये बेब है, एक सेकंड।
2: देखिए सुसु करा होगा उसने, देखिए।
1: हाँ सुसु ही करा है, सुसु करा है। चल
2: उतार दीजिए,
1: एक सेकंड उतार दिया। मैं जी मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा सा कह देंगे, मैं स्पीकर फोन पे लगा देता हूँ, शायद आपकी आवाज से समझ आ जरा। देखो आंटी कर रही है, क्लैपिंग करो। हाँ मुझे भी वही याद आ रहा है। नहीं बहन जी आप सही कह रही हैं, रात को ना इसने वो मुर्गा खा लिया था जिससे पेट में दर्द हो जाता है और थोड़े बहुत कान खराब हो जाते हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मैंने आपका नंबर डायल किया।
2: और मैं पागल हूँ, ओह नो।
1: अब जरा मेरे साथ प्यार से बोल दीजिए एक बार।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष महापुरुष।
1: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: हाय रब्बा, इतनी एनर्जी दलेर पाजी आपने दे दी हमें इस सुबह। वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आफरीन, आपकी राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और हाय दलेर पाजी की एनर्जी एक तरफ, और मेरे ख्याल से पूरे बॉलीवुड के सिंगर्स की एनर्जी एक तरफ। हाँ, कुछ और सिंगर्स हैं जो इनकी एनर्जी जैसे मैच करते हैं, जैसे मेरे ख्याल से सुखविंदर सिंह की भी एनर्जी काफ़ी रहती है इन गानों में। वेल, और दिलजीत पाजी तो मिक्स है एकदम, एनर्जेटिक गाने भी गा सकते हैं, सॉफ्ट गाने भी गा सकते हैं, और हर किस्म के गाने गा सकते हैं। वेल, हैविंग सेड दैट, इट इज़ वीकेंड, तो एनर्जी की तो ज़रूरत तो है ही हमें, है ना। बस अपने आप एक तरह से ना हम एनर्जी आ ही जाती है वीकेंड सोचकर। थर्सडे है आज, थर्सडे पर आप क्या क्या कर सकते हो, कतर में क्या करोगे, और OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी क्या क्या देख सकते हो, सब कुछ बताएगी यहाँ पर आपकी आफरीन। मीनवाइल गुड मॉर्निंग, शुड मॉर्निंग के मैसेजेस आ रहे हैं। यहाँ पर मोहम्मद राजू का मैसेज आया है, वेरी गुड मॉर्निंग, और उसके अलावा यहाँ पर नाजीन जी का मैसेज आया है, जुल्फिकार का मैसेज आया है, सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। 5000196 इज माई व्हाट्सएप नंबर, कनेक्शन एक कर लेते हैं और इस खूबसूरत सुबह को और खूबसूरत बनाते हुए आपका दीदार अगर यहाँ पर मैसेजेस पर भी हो जाए तो बस मजा ही आ जाए। 5000196। अगर मेरी बात समझ में नहीं आई तो गाने में समझ लीजिए। असीर स्कोर और देव नेगी की आवाज में गाना माइक से दिल तक आफरीन के साथ, इट्स हॉट।

0: और मेरे दोस्त इस गर्मी में मैं जानती हूँ भाई, तड़पना तो जरूर बनता है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट रन मिर्ची मॉर्निंग्स। और देखिए भाई, ऐसा लग रहा है आपको कल से कि हाँ गर्मी तो यार है ही उतनी, लेकिन कल से जैसे ही बाहर निकलते हो ना आप घर से, तो अगर आप चश्मे पहन रहे हो तो आपके चश्मे के ऊपर पूरी तरह से फॉग आ जाता है, आपकी गाड़ियों में पूरी तरह से फॉग आता है, यानी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और ये क्यों हो रहा है पता है? ये हो रहा है बिकॉज ऑफ अल मरज़म। अब आप सोच रहे हो कि अल मरज़म क्या होता है, तो मैं आपको बता दूँ, अल मरज़म वो होता है जब हमारे कतर में गर्मी तो है ही अनकंफर्टेबल करती है, लेकिन ह्यूमिडिटी जो है वो बढ़ती जाती है। सो वेल, ये जो टाइम है ये हमारे कतर में शुरू हो गया है। कोई ना भाई, बस और एक महीना मेरे ख्याल से, एक डेढ़ महीना मैक्स इंशाल्लाह, उसके बाद में हमारे अच्छे वाले दिन कतर के शुरू हो जाएंगे। लेकिन आज का वेदर एग्जैक्टली क्या कहता है ये जरा सुन ले।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
0: वेदर अपडेट। वेल, वेदर आज का ये कह रहा है कि मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो आज होने वाला है 42 डिग्री सेल्सियस पर और मिनिमम 34। हालांकि मैक्सिमम टेम्परेचर्स तो 42 रहते हैं, लेकिन जो उसके फील्स होते हैं ना वो थोड़े से ज़्यादा आपको लगेंगे, क्योंकि ये किस वजह से लगेगा आपको? ह्यूमिडिटी विल मेक हाई फील लाइक 48-47 ऐसा, और ह्यूमिडिटी आज 60% पर भी है। मतलब अभी भी अगर आप निकलते हो ना घर से तो बहुत पसीने तो ज़रूर आएंगे ऑफिस पहुँचते, पर कोई ना, ये अच्छे वाले गाने जो है ना वो आपको एकदम ठंडा ठंडा रखेंगे यहाँ पर। मीनवाइल यहाँ पर गुड मॉर्निंग शुड मॉर्निंग के मैसेजेस आ रहे हैं फिलहाल तो। यहाँ अलीशान, क्या आपका नाम अलीशान है? गुड मॉर्निंग आफरीन, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल खैर से हूँ, आप भी आई होप बिल्कुल ठीक है। तो गुड मॉर्निंग शुड मॉर्निंग यहाँ पर आप कर सकते हैं, 5000196 इज माई व्हाट्सएप नंबर। मीनवाइल ड्रामा जो है ये तो ह्यूमिडिटी और गर्मी का चलता रहेगा, लेकिन गानों का ड्रामा तो बरकरार रहना चाहिए।
2: वेदर चेक ब्रॉट टू यू बाय RSL ग्रुप ऑफ कंपनी। अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब। फॉर ब्राइट फ्यूचर कॉल नाउ 3100813।
0: जैसदेव नेगी और भावनी पांडे, श्रद्धा पंडित की आवाज में ये गाना।

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: Hi, this is अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन।
3: Hi, everybody, मैं हूँ शाहरुख खान।
4: Hi, this is सलमान खान। खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
7: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

देखिए क्या करें, बच्चे हैं, जी थोड़ी भरेगा। जब इतना मजेदार इवेंट जो पिछले एक महीने से लगभग चल रहा हो और फिर भी ये बच्चों का, बच्चे क्या यार, बड़ों का भी जी नहीं भरे, तो एक्सटेंड तो करना पड़ेगा ही ना। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और ऐसे ही कुछ होने वाला है कतर टॉय फेस्टिवल के साथ। देखिए भाई, ऑर्गेनाइज बाय कतर कैलेंडर इन कोलैबोरेशन विद स्पेस टून ग्रुप, ये फेस्टिवल अब एक्सटेंड हो गया है अंटिल 4th of August। यस, अगर आप सोच रहे हैं कि अभी तक हम गए नहीं और जाने की कोशिश भी हमने की थी लेकिन वो क्या है ना, अवेलेबल नहीं था, स्लॉट्स बुक थे, तो फटाफट से आज जाइए और 4th, 3rd जो भी स्लॉट अवेलेबल है उसका स्लॉट बुक कर लीजिए, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ अ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस जो बच्चे क्या बड़े भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। इतने सारे टॉय ब्रांड्स हैं वहाँ पर और मतलब 50-70 रियाल्स में पूरा एक पैकेज मिल जाता है। 3-4 घंटे बच्चे तो मज़ेदार तरीके से एंटरटेन हो ही जाते हैं, साथ ही साथ आप भी जाते हो। मैं हूं आफरीन आपके साथ राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आलिया, आपकी मम्मी सोनी राजदान बड़ी क्यूट है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं राजी के सेट पे वर यू नर्वस और एक्साइटेड टू वर्क अलोंग विद योर मॉम, व्हाट वाज द फीलिंग?
3: यू नो आई वाज वेरी नर्वस, क्योंकि पहले तो मम्मी भी है, पर नंबर वन फर्स्ट माय को एक्टर ऑन सेट, वो मेरी पहली को एक्टर है, मेरी मम्मी नहीं बन सकती, तो मैं नर्वस थी क्योंकि मुझे लगा कि अगर वो नर्वस है तो मैं ज्यादा नर्वस हूँ। अगर उनको लाइनें शायद नहीं आते हैं तो मैं कैसे कहूंगी कि उनको नहीं आ रहा है, तो आई वाज लाइक मुझे ऐसा लग रहा है मैं दो लोगों के लिए एक्टिंग कर रही हूँ। मैं जब वो पहली बार सेट पे आई पर तब मुझे ऐसे रियलाइज हुआ कि वो एकदम बिंदास है, शी इज एक्चुअली एग्जैक्टली लाइक मी।
2: आलिया, वो आपके जैसी नहीं, आप उनके जैसी हैं। चिकन और एग, व्हाट केम फर्स्ट? मेरे हिसाब से चिकन। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
5: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
1: बार बार
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6
5: FM मिर्ची वन इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: देखो कतर की ना बहुत चीजों को ना आप अंडर एस्टिमेट कर देते हो। देखिए बेस्ट एग्जांपल तो कतर नेशनल लाइब्रेरी ही है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। और कतर नेशनल लाइब्रेरी को जो हम सिर्फ किताबों के लिए जानते हैं, ये उससे कहीं ज्यादा है। अंडर एस्टिमेट कर रहे हो आप, क्योंकि देखिए अब QNL ने अगस्त का एकदम डिफरेंट लीग बताया है, उसमें खेल रहे हैं ये देखा जाए तो। क्योंकि सिर्फ बुक्स ही नहीं, यहाँ स्टार्टअप वर्कशॉप, AI सेशंस, आर्ट गैदरिंग्स, चेस मीटअप्स, फैमिली स्टोरी टेलिंग, स्टेम कैंप्स और बच्चों के लिए समर लाइब्रेरी कैंप तक, मतलब पूरा मंथ लर्निंग का फेस्टिवल बन गया है। एंड बहुत मजे की बात है ना, ऐसे वक्त पर जब बच्चे घर पर है, छुट्टियां चल रही है, तो पूरी तरह से दे कैन ऑप्टिमाइज देयर टाइम एंड इनफैक्ट यूटिलाइज द ऑल द फैसिलिटीज ऑफ QNL, दैट इज कतर नेशनल लाइब्रेरी। तो अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, AI समझना चाहते हैं, बच्चों को स्क्रीन से थोड़ा हटाकर बस मीनिंगफुल एक्टिविटीज ही देनी है, देन QNL इज द प्लेस। मैं हूं आफरीन आपके साथ माइक से दिल तक, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: जी बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है।
1: मैं जब भी आटा गूंथती हूँ तो आटा मेरे हाथ में चिपक जाता है, क्या करूँ?
0: हाथ में चिपक जाता है? सिंपल तो है, क्या क्या करूँ? पैर से आटा गूंथ, हाथ में नहीं चिपकेगा।
2: रख, रख।

वेल, जानते हो आप कि बॉलीवुड में एक ऐसा नाम है, दो अलग अलग इंसान है लेकिन नाम सेम है, जो सिनोनिम बन गया है टैलेंट और इंसानियत का। और वो नाम है सोनू। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। और सोनू सूद और सोनू निगम, इन दोनों के बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि यस राइट, दोनों का बर्थडे है आज के ही दिन। इनफैक्ट इट्स द सेम डेट एंड सेम बर्थ ईयर एज वेल, 30th of July 1973 आज सोनू निगम एंड सोनू सूद का बर्थडे है। वेल, पहले बात करते हैं हम सोनू निगम के बारे में। बहुत लोग उन्हें सिर्फ प्लेबैक सिंगर मानते हैं, लेकिन हियर समथिंग वेरी फैसिनेटिंग, उन्होंने 30 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस में गाने रिकॉर्ड किए हैं। एंड पता है क्या, सिर्फ 4 साल की उम्र में उन्होंने स्टेज परफॉर्मेंस दी थी अपने फादर के साथ में, और वो भी मोहम्मद रफी का गाना गाया था पहली बार, क्या हुआ तेरा वादा। मतलब यार, इतनी छोटी उम्र में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सोनू सूद। हम सभी जानते हैं कि पैंडेमिक में, कोविड के टाइम पर, उन्होंने कितना बड़ा योगदान दिया था। बसेस अरेंज की थी लोगों के लिए, मतलब जो अपने घर वापस लौट जाए। फिर उन्होंने अपना ना जुहू का होटल है वो हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए खोल दिया था। इनफैक्ट यू नो व्हाट, किर्गिस्तान में फंसे 1500 लोगों से भी ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स थे वहाँ पर, जिसको इन्होंने चार्टर्ड फ्लाइट से वापस भी बुलाया था। एंड देन नॉट ओनली दिस, बाद में सोनू सूद ने जॉब्स के लिए प्रवासी रोजगार इनिशिएटिव और स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स भी शुरू की थी। मतलब यार, कितनी गजब की बात है। ये सोनू नाम में ही शायद कुछ मैजिक है। एक सोनू है जो आवाजों से, अपनी आवाज से यादें बना देता है, दिल जीत लेता है, और दूसरी तरफ दूसरा सोनू है जो अपने काम से दुआएं कमा लेता है। मिर्ची की तरफ से दोनों इन लेजेंड्स को जन्मदिन की ढेर सारी मुबारकबाद। और जब सोनू निगम की बात यहाँ पर हुई है, तो ऑब्वियसली अगला गाना उन्हीं की आवाज में प्ले करूंगी। और देखिए भाई, सोनू के सारे गाने एक तरफ और उनके इंडी पॉप के गाने एक तरफ, 90s के, क्या आपको भी ऐसे ही लगता है?

0: असीस कौर और यासिर देसाई की आवाज में ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, और मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है सुबह की 7:13 की तरफ। और चलिए सुनते जरा आज नावेद किसको मुर्गा बना रहा है।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
2: हेलो।
3: हाय शिवानी।
2: हाय।
3: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
2: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
3: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
2: समाचार?
3: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
2: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
3: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
2: हेलो।
3: हाय शिवानी।
2: हाय।
3: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
2: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
3: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
2: समाचार?
3: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
2: ठीक ठाक है,

0: लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे वन सेकेंड चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है, आप ले आएंगे वो टायर के पास?
1: नहीं, अपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ले ना, खरीद नहीं सकता, अपने सिर पे करवा ले जाके उसको, रोका हुआ है।
0: शिवानी इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
1: आप सिर्फ मेरी बात खर्च के गाड़ी खरीद ले,
0: ये सिर्फ 3
1: करता होगा।
0: अच्छा एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
1: अपने सिर पे करवा ले
0: शिवानी।
1: हेलो,
0: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा मेरी बात,
1: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद भी कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा शिवानी मेरी बात सुनो प्लीज, फोन मत काटना, शिवानी मेरी बात सुनो
1: बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ
0: शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कांग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ोबी शट अप, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
1: कुकड़ुकु
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: गोइंग होम, मेक इट रिवॉर्डिंग विद कल्याण ज्वेलर्स,
4: एंजॉय 0% मेकिंग चार्जेस ऑन सिलेक्ट ऑर्नामेंट्स, विजिट कल्याण ज्वेलर्स टुडे, कंडीशंस अप्लाई।
5: तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
6: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा,
7: दोनों मिलेगा।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
9: 89.6
10: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: HG Mornings, brought to you by Kim's Health Medical Center.
1: देखो, क्या आप भी उन्हीं में से हो कि बिजनेस तो शुरू करना है लेकिन पेपर वर्क का ये जो जंगल है ये क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है? कभी फॉर्म्स होते हैं, कभी अप्रूवल्स होते हैं, और इसी कंफ्यूजन को सिंप्लीफाई करने के लिए कतर ने एक इंटरेस्टिंग स्टेप लिया है।
0: क्या खबर कतर?
1: खबर ऐसी है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बिजनेस गाइडेंस एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफिस लॉन्च किया है। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, स्टार्टअप का प्लान बना रहे हैं या अपनी कंपनी रजिस्टर करना चाहते हैं तो ये ऑफिस आपको पूरे प्रोसेस में गाइड करेगा। कंपनी कैसे एस्टैब्लिश करनी है, किस सर्विस के लिए कहां जाना है और किस तरह से पेपर वर्क कंप्लीट होगा, सब एक ही जगह पर समझाया जाएगा। ये ऑफिस लुसेल में मिनिस्ट्री हेडक्वार्टर्स पर संडे से लेकर थर्सडे सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक ओपन रहेगा। तो अगर आप या आप में से ऐसा कोई है, कोई दोस्त है जिसके दिमाग में बिजनेस शुरू करने का आइडिया तो है लेकिन कहां से शुरू करना है, कैसे करना है, सो दिस इज द प्लेस। मैं हूं आफरीन आपके साथ, माइक से दिल तक, राइट यू ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: अरे यार, इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
1: क्योंकि मैंने रिचार्ज किया ओरेडो के योर स्पेशल ऑफर से।
0: योर स्पेशल ऑफर?
1: हाँ, ये रिचार्ज मेरे हाला नंबर के लिए स्पेशली बना हुआ ऑफर है। ज्यादा वैल्यू और वो बेनिफिट्स जो मुझे एक्चुअली चाहिए।
0: ये तो मेरे नॉर्मल रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
1: बिल्कुल, योर स्पेशल ऑफर मेरे लिए सबसे अच्छा रिचार्ज ऑप्शन है।
0: ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बना है खास आपके लिए। अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो।
2: Going home? Make it rewarding with Kalyan Jewelers.
3: Enjoy 0% making charges on select ornaments. Visit Kalyan Jewelers today. Conditions apply.
4: Dosti kai ko sulay madam. No sorry, no thank you.
5: Bhai saab, sorry and thank you. हमें दोस्ती नहीं, एंटरटेनमेंट चाहिए।
6: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा। खूब मिलेगा।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: वेल गुरु की आवाज में ये गाना निकिता गांधी का साथ राइट ऑन मिर्ची जुड़ गई है आपके साथ। हाँ जी भाई, गुड मॉर्निंग। इट इज 30th of July, महीने के आखिर में हम आ ही गए हैं और भाई वीकेंड भी आ गया है। मतलब ये जब वीकेंड ना ऐसे बिल्कुल लग कर आता है ना महीने के आखिर या शुरुआत की तरफ, जहाँ पर सैलरीज भी होती है आपके पास, तो यार बड़ा मजा आता है ना। वेल विद दिस वीकेंड एनर्जी कीपिंग हाई, लेट्स गेट ऑन टू आवर टाइम, जहाँ पर लाइट्स कैमरा सीन टच खेलने का वक्त आ गया है। और भाई मैसेजेस भी आ रहे हैं यहाँ पर ऑलरेडी, चलिए मैसेजेस का रिप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर सीन टेस्ट का आज का सीन तो सुना दूं।
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट, सीन टेस्ट।
2: कहा राजा भोज और कहा गंगू तेली,
3: वो दोनों कहाँ है मुझे नहीं मालूम।
2: आपकी सोच मेरे इरादों की इमारत को हिला नहीं सकती। फटे मोहब्बत की है मैंने गीता से, फटे
4: फटे।
5: ₹5,00,000 कैश मेरी बेटी गीता की जिंदगी से हमेशा हमेशा निकल जाने की कीमत है।
2: पैसों से प्यार को तोला नहीं जाता। एक तरफ दो दिलों का मेल, दूसरी तरफ हाथों का मेल।
5: अच्छा, तो फिर ये लो।
0: ऑल राइट, आप सोच रहे होगे कि कोई भाई बहुत पुरानी मूवी लग रही है आफरीन, ये तो कुछ 60s, 70s, 80s की मूवी तो नहीं सुना रही हो। नो माय फ्रेंड्स, ये 2000 के एरा की ही मूवी है और ऐसी मूवी है जो बहुत ज्यादा फनी थी। हाँ, ये जो सीन था एक फ्लैशबैक था उस मूवी का, पास्ट का था, इसीलिए इस तरह से आपको लग रहा होगा, लेकिन नई मूवी थी इतना तो मैं बता सकती हूँ। अच्छा, तो एक एक चलो हिंट भी दे देती हूँ मैं कि ये जो है इसके 1, 2, 3, 4 सीक्वल्स आ गए हैं। अब यहाँ पर मैसेजेस तो आपके सबके आ रहे हैं, लेकिन मुझे ये कोई नहीं बता रहा है सॉरी कि ये कौन सा वाला सीक्वल है, ये 1 है 2 है 3 है क्या है, वो तो लिखो। किसी ने भी नहीं लिखा है, ठीक है। तो 5000 1896 व्हाट्सएप नंबर है मेरा, अगर आपने पहचान लिया तो फटाफट से यहाँ पे बता दो कि भाई ये कौन सी मूवी है। बड़ी कॉमेडी मूवी थी, बड़ी मजेदार मूवी, वन ऑफ माई फेवरेट्स। तब तक के लिए अगला गाना आपको सुना रही हूँ मैं, माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा। अखिल, सचदेव और तुलसी कुमार भी यहाँ पर आपके साथ होंगे और मिर्ची इज हॉट।

0: Bollywood, Bollywood, Boulder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: कुणाल खेमू, एज एन एक्टर आपको डायलॉग्स याद रखने पड़ते हैं, आपको स्क्रीन प्ले याद रखना पड़ता है. एज ए ह्यूमन बीइंग आपको आपके सपने याद रहते हैं?
3: मुझे एक्चुअली आई एम सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम, आई डोंट रिमेंबर माय ड्रीम्स. मुझे अपने सपने याद नहीं रहते, तो आई थिंक व्हिच इज अ गुड थिंग, क्योंकि मुझे नाइटमेयर्स भी याद नहीं रहते. तो आई कैन, मैं एक नई शुरुआत करता हूँ हर दिन की.
2: क्लासिक फॉर्मूला है कुणाल खेमू, काश हम भी ऐसा कर पाते, हर दिन की नई शुरुआत. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल्डर, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
4: कभी प्यार का एहसास और कभी खुद को दिया हुआ एक खूबसूरत तोहफा. फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स इज बैक एट तनिष्क. रोज पहनने के लिए स्टाइलिश डिजाइन हो या किसी खास मौके के लिए स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी, हर पीस में है तनिष्क का भरोसा और बेहतरीन क्राफ्ट्समैनशिप. यही नहीं, गेट अ फ्री गोल्ड कॉइन ऑन एवरी 3,000 रियाल्स स्पेंट ऑन डायमंड परचेसेस. तो आज ही विजिट करें तनिष्क एट लुलु हाइपर मार्केट, डी रिंग रोड एंड दोहा फेस्टिवल सिटी टुडे.
5: नहीं! बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना.
6: अरे, पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
7: कैसे रुक सकता है?
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
8: FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: वेल, इस शरारत भरी मॉर्निंग में आ गया एक शरारत भरा गाना आपके लिए, मधुबन की बातचीत और जैस्मिन सनलिस की आवाज में, और एक शरारत भरी आवाज आपके साथ जुड़ भी गई है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, सिंपली आफरीन है आपके साथ में। एंड बॉस, आज वीकेंड है बस, और जब वीकेंड आता है ना तो आफरीन अपने एकदम एक्साइटमेंट के चरम पर रहती है, ठीक है। स्पेशली जब तब मैं अब रिसेंटली लाइक दो दिन पहले ही मैं वेकेशन से लौटी हूँ और मुझे बिल्कुल भी रेस्ट करने का मौका नहीं मिला, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द वीकेंड। और बातों बातों में मैं बात यही भूल गई कि भाई मैं आई हूँ यहाँ पर गेम खेलने के लिए, उसका जवाब देने के लिए। बस आप भी ना बातों में मुझे एकदम उलझा ही देते हो। सो वेल, लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट है यहाँ पर, सीन सुना रही हूँ बॉस, और आपने मुझे बताना है कि आखिर ये कौन सी मूवी का सीन है, ठीक है। और चलो इसके बारे में बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले सीन तो सुन लेते हैं।
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट, सीन टेस्ट।
2: कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली?
3: वो दोनों कहां हैं मुझे नहीं मालूम। आपकी सोच मेरे इरादों की इमारत को हिला नहीं सकती। हटे मोहब्बत की है मैंने गीता से।
0: Okay, all right. मतलब ये मूवी मैं जब भी देखती हूँ मुझे बड़ा मजा आता है। कुछ मूवीज होती है ना कि आपको पता है where the joke is gonna land, but still you watch it again and you laugh hilariously. मैं उस टाइप की, और ये मूवी भी उस टाइप की है। बहुत सारे मैसेजेस यहाँ पर आए थे, मैंने अच्छे खासे हिंट दिए थे कि मुझे इस मूवी के बहुत सारे सीक्वल्स आए हैं, आपने बताना है कौन सा नंबर है। एंड देन आफ्टर दैट आई गॉट सो मेनी मैसेजेस हियर, जैसे कमर, फहमिदा फातिमा, मोहम्मद यूसुफ खान, then I have Mohsin, Trisha, Charlie, और ये कौन है, नाम नहीं लिखा है, नहीं बता सकती, सुलेमान। इन सभी के मैसेजेस आए हैं, लेकिन अख्तर साहब यहाँ पर वॉइस मैसेज भेजे हैं, वो सुन लेते हैं कि कौन सी मूवी है।
4: गुड मॉर्निंग, दिस इज मोहम्मद अख्तर।
0: वेरी गुड मॉर्निंग।
4: गोलमाल 3,
0: ऑल राइट,
4: डायरेक्टेड बाय रोहित शेट्टी, एंड द प्रोटैगनिस्ट आर अजय देवगन, कुणाल खेमू, अरशद वारसी, करीना कपूर, चक्रवर्ती,
0: हाँ जी,
4: एंड मेनी अदर्स। थैंक यू
0: अख्तर साहब, थोड़े दिन में आप मेरी नौकरी भी ले लोगे, इतने डिटेल में आप पूरी मूवी की पूरी इन्फॉर्मेशन देते हो जितना मुझे भी शायद नहीं पता होगा। और बस इसी तरह से गोलमाल 3 इज द राइट आंसर, और बहुत बड़ा स्टारकास्ट था। एंड देखो, मल्टी स्टारर और बड़ा स्टारकास्ट होना इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट हाउ टू डील विद इट, हाउ टू गिव देयर ईच कैरेक्टर इम्पोर्टेंस, ये कोई रोहित शेट्टी से सीखे, जो उन गोलमाल के सीरीज में वो बहुत बखूबी करते आए हैं। लेट मी बी स्पेसिफिक, ओनली गोलमाल की सीरीज में, नॉट उनकी रोहित शेट्टी की दूसरी मूवीज में, मानते हो कि नहीं? चलिए ऑन दिस नोट, शान अनुष्का मोनाली ठाकुर की आवाज में गोलमाल 3 का ये गाना आपके लिए, गिविंग द राइट काइंड ऑफ वीकेंड एनर्जी, है ना। माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा और मेरी शीट्स हॉट।

0: बोल दामिनी बोल। बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है।
1: वो ना वो पराठे गरम करते वक्त मैं कितना भी ध्यान रखूं वो जल ही जाते हैं और मेरी मम्मी इतना गुस्सा करती है, मैं क्या करूं?
0: क्या करूं का क्या मतलब है, जलने वाले तो चलेंगे, तू मम्मी को बोल के किचन में ना खड़ी रहे। सिंपल है।
2: खोपड़ी।

0: इस गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सईद कादरी ने। फिल्म आवारा पंटू से सुनते रहिए बेजुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: ये जुनून भरा गाना सुबोध शर्मा की आवाज में, और ये जुनून भरी आवाज जो आप सुन रहे हो वो है सिंपली आफरीन की। और फिलहाल के लिए ये बताना चाहूंगी, मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है 8:06 की तरफ।
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
1: देखो मुझे पता है ना, ये वीकेंड ना बोर होने का स्कोप ही नहीं है आपको। अजी आफरीन, हम तो घर पर ही है, हम कहीं नहीं जा रहे, कुछ नहीं कर रहे, इसलिए तो कह रही हूँ भाई घर पर भी हो तो फिर बोर नहीं हो सकते हो, क्योंकि ओटीटी पर बहुत मजेदार चीजें आई हैं।
3: अरे भाभी जी, एकदम लेटेस्ट डिजाइन है,
4: फ्रेश है भैया, फ्रेश है, एकदम नया आया है।
5: अरे मार्केट में नया क्या है?
1: वेल, देखिए नया तो सबसे बेस्ट मुझे लग रहा है आउट ऑफ ऑल इज आदर्श बाल विद्यालय। इट्स अ हार्ट वार्मिंग हिंदी कॉमेडी ड्रामा, और ये किसने क्रिएट किया पता है? बिस्वपति सरकार और समीर सक्सेना। बिस्वपति सरकार वही है जो टीवीएफ में बहुत सारी सीरीज और बहुत सारी चीजों में इन्होंने काम किया है, और इसमें द स्टार ऑफ द शो आई वुड से इज के मेनन एज द एक्सेंट्रिक हेडमास्टर ज्ञानेश्वर त्रिपाठी, हु लीड्स अ क्वर्की ग्रुप ऑफ टीचर्स ऑन अ मिशन टू ट्रांसफॉर्म अ फेलिंग दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल। और बस इसी पूरे चक्कर में यहाँ पर बहुत सारी कॉमेडी चीजें होती है, लेकिन साथ ही साथ ना ये पूरा सीरीज ना प्रीची भी नहीं लगता है, मॉरल वैल्यूज भी देता है, कॉमेडी भी करता है, एंड आई थिंक सो इट्स अ परफेक्ट ब्लेंड। और ऐसे सीरीज ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मेन रीजन कि आप ना बच्चों के साथ देखते हो, और ओटीटी पर ऐसे चीजें ना बहुत कम ही आती है। सो वेल, Amazon Prime पर वैसे ये स्ट्रीम हो रहा है आदर्श बाल विद्यालय। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर रोमांटिक मूड में हो दोस्तों, मुसाफिर कैफे, दिस इज अ हार्टफेल रोमांटिक ड्रामा, ठीक है, नेटफ्लिक्स पर है ये। एंड ये जो है विक्रांत मासे, हु डजंट नो, ही डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन, राइट? एक्टिंग तो बेहतरीन करते ही है। इनके साथ में आपको नजर आएंगे वेदिका पिंटो और महिमा मकवाना। आई हैवंट सीन देम एक्चुअली दीज गर्ल्स, बट ठीक है, विक्रांत इज डूइंग, वो अपने पूरे कंधों पर ये सीरीज को लेकर चलते हैं, ठीक है। तो बहुत ही प्यारी सी कहानी है, चंदर की कहानी है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और जिसका सपना है कि राइटर बने, और फिर उसका बहुत ही पेनफुल ब्रेकअप होता है सुधा के साथ, और उसके बाद में वो पहाड़ों में जाकर अपना एक कैफे सेटअप करता है जहाँ पर उसकी मुलाकात प्रीति से होती है, लव ट्राइंगल जैसे आप कह सकते हो, लेकिन एक नए अंदाज में। तो ये भी आप देख सकते हो ऑन नेटफ्लिक्स, मुसाफिर कैफे। फिलहाल के लिए तो दो चीजें ही मैंने आपको बताई है, लेकिन अगर और चीजें जानना चाहते हो तो मुझे जरूर व्हाट्सएप करो 5000196। अपन के पास लिस्ट है बॉस, है ना? यू गॉट टू स्टे ट्यून्ड विद मी, दैट इज माइक सदल तक आफरीन के साथ ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. Na vizva la burga. Milchi, burga.
1: Hello,
2: Mr. Gotham.
1: कौन बोल रहे हैं?
2: सर मैं एक्चुअली आज सर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं सर आप सुना है वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है। मैं जो गाने गाता हूँ ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं।
1: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं?
2: पहले मोहल्ले में मैंने स्नेक निकला था, तो स्नेक का ही घुस गया था, तो मेरे को पहले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू, आजा स्नेक निकाल दे। सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ सर, हर तरह के गाने खा लेता हूँ, लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में। नागिन क्या है सर? नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
1: हाँ, सर कुछ गाके सुनाएगा?
2: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर, वो देखा है ना कोंडा आपने? ना कोंडा फिल्म देखी है?
1: अरे एक काम करो, अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ, उसको भेज दो।
2: वही सर है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को।
1: कौन से गाने
2: सर? वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं, उसने काम किया ना कोंडा में, यही बात है मेरे लिए। एक पेशकश कर रहा हूँ। तने डोले मेरा मन डोले, मेरे गले का गया गुजार रे, कौन बजाए बांसुरिया। सर बिच्छू वाला, ये बिच्छू मुझे काट खाएगा।
1: सर
2: बोलिए,
1: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात
2: जी सर?
1: और जिसने तुझे नंबर दिया है, क्या किसने किसने नंबर दिया था तुझे?
3: मिस्टर गौतम, इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है, छोटा सा मजाक किया, मुर्गा बन गया आपका।

0: Mirchi Murga. Navid ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
1: Yep, Pajak.
2: Yaar, budget tight hai. Shopping kaise kare?
3: Budget tight? तो लुलू फैशन स्टोर चलो।
2: क्यों? वहाँ क्या मैजिक हो रहा है?
3: मैजिक नहीं, हाफ पे बैक।
2: ओहो, एक्सप्लेन करो जरा।
3: सिंपल रेडीमेड गार्मेंट्स, साड़ीज, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग्स और बेबी एक्सेसरीज पे हाफ पे बैक।
2: ओह, मतलब 200 की शॉपिंग पे 100 वापस।
3: बिल्कुल, और वाउचर रिडीम भी इन्हीं कैटेगरीज में कर सकते हो।
2: ये हुई ना स्मार्ट शॉपिंग। लुलू फैशन स्टोर, हाफ पे बैक, शॉपिंग का स्मार्ट तरीका। स्पेंड QAR 200 एंड गेट QAR 100 फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली। लुलू फैशन स्टोर, लिमिटेड पीरियड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। लुलू, व्हेन द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।
4: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा, जा।
5: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने।
6: हिट गाने
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
8: FM मिर्ची वन।

हाँ हाँ जानती हूँ, खुश तो बहुत हो गए आज आप। वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची। और देखिए भाई, आखिर आ ही गए हैं हम वो महीने के डेट्स पर जहां पर खुश बड़े तो होते हैं, आप भी होते हो, मैं भी होती हूँ भाई, जब सैलरी आती है। और स्पेशली देखिए, वीकेंड पर सैलरी आ गई है, मतलब अच्छे से खर्चा आप करने वाली हो। लेकिन अच्छा, होल्ड ऑन, खर्चा इतने करने से पहले जरा आपकी सेविंग्स को पहले ही हटा दीजिए अच्छे एक्सचेंज रेट का फायदा उठा के, है ना। जैसे आज का एक्सचेंज रेट ये कह रहा है, कतरी रियाल के बदले मिल रहे हैं इंडियन रुपीज 26.24, वहीं जनाब पाकिस्तानी रुपीज कह रहा है कि वो है 76.35 पर। जहां बांग्लादेशी टाका की बात करें तो बांग्लादेशी टाका एक कतरी रियाल के बदले आपको मिल रहे हैं कुछ 33.98, श्रीलंकन रुपीज एक कतरी रियाल के बदले आपको मिल रहे हैं तकरीबन 92.21, और लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट एक कतरी रियाल के बदले आपको मिल रहे हैं नेपाली रुपीज 41.90। यदि आज के एक्सचेंज रेट, घर भेजे पैसे, ढेर सारी खुशियां, खुशियों का नंबर वन फॉर्मूला, वन एंड ओनली 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका. With iPay, send money starting from just QAR 5. And yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: Going home? Make it rewarding with Kalyan Jewelers.
2: Enjoy 0% making charges on select ornaments. Visit Kalyan Jewelers today. Conditions apply.
3: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते. जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है.
4: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है.
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6
6: FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: वेल सोनू कक्कर और नेहा कक्कर लैब जंजुआ की आवाज में ये गाना फ्रॉम द मूवी क्वीन बैटल्स लंदन ठुमकदा। And on this lovely, lovely Thursday morning, हमारे apparently ये जो महीने का आखिरी वाला दिन भी almost हम गिन सकते हैं, वैसे कल है, लेकिन हाँ कल हमारी मुलाकात तो नहीं होगी ना, लेकिन आज तो है, तो बस मुलाकात जो होगी अगले महीने होगी, अगले हफ्ते होगी। क्या रफ्तार चल रही है, नहीं ये दिन के, हफ्तों के, महीनों की और साल की, इट्स इनक्रेडिबल। वेल हैविंग सेड दैट, वक्त भी यहाँ पर इतना फटाफट गुजर गया है कि यार अब हो गया है वक्त कि हम अपना अगला वाला गेम खेले जिसका नाम है पहचान कौन। यहाँ पर मैं आपको एक आवाज़ सुनाने वाली हूँ, एक सेलिब्रिटी की आवाज़ है, आपने गेस करना है कि आखिर आफरीन किसकी आवाज़ सुना रही है। सो रेडियो सेट्स के वॉल्यूम करो हाई और ध्यान से ये आवाज़ सुनो।
2: कुछ ज्ञान मत दो जब तक कोई मांगे ना, बिल्कुल ज्ञान नहीं देना चाहिए। जब तक आप इस सामने कोई रिसीवर नहीं है मत दो ज्ञान, आप ज्ञान बांटो मत बिल्कुल भी। आप ज्ञान
1: ऑल राइट, कौन है ये, कौन कह रहा है कि भाई ज्ञान बिल्कुल देना बंद कर दो लोगों को जब तक कि कोई रिसीवर नहीं है। 5000 1896 बताओ कौन से सेलिब्रिटी की ये आवाज है, फटाफट से बताओ 5000 1896। मीनवाइल अगला गाना आपको मैं यहाँ सुना रही हूँ दर्शन रावल और असीम स्कोर की आवाज में, राइट यू ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Bollywood, Bollywood, bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: Amit Trivedi, studio hai, guitar hai, mahol hai. Ruke kis liye aap?
3: Hone do batiya, hone do batiya. Seene mein dil, sorry, one more take please.
2: Take as many takes as you want, Amit Trivedi. Hum to sunte rahenge. Mirchi, it's hot.
0: Bollywood, bolda. Bollywood, Bollywood, Bollywood, बोल्डा.
1: Only on Mirchi. It's hot.
4: कतर में हैं और ड्राइविंग लाइसेंस भी है. क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की?
5: तो इंतजार खत्म. RSL ग्रुप ऑफ कंपनीज लेकर आया है एक सुनहरा मौका स्टेबल इनकम के साथ.
4: अभी कॉल करें 3100-0813.
6: कभी प्यार का एहसास और कभी खुद को दिया हुआ एक खूबसूरत तोहफा. फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स इज बैक एट तनिष्क. रोज पहनने के लिए स्टाइलिश डिजाइन्स हो या किसी खास मौके के लिए स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी, हर पीस में है तनिष्क का भरोसा और बेहतरीन क्राफ्ट्समैनशिप. यही नहीं, गेट अ फ्री गोल्ड कॉइन ऑन एवरी 3,000 रियाल्स स्पेंट ऑन डायमंड परचेसेस. तो आज ही विजिट करें तनिष्क एट लुलु हाइपर मार्केट, ई रिंग रोड एंड दोहा फेस्टिवल सिटी टुडे. TNC Supply.
7: Hello Shops, our product is phenomenal, one of a kind, but still profit nahi ho raha hai. Maine Baba Ji se advice li to kehte hain.
8: Office ke toilet mein toilet paper white nahi, yellow lagao, profit aayega.
7: Relative se advice lo to kehte hain.
9: Kaam ko time do, 25 ghante kaam karo, dark circles honge to future bright hoga.
7: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो.
10: भाई क्या कर रहा है तू? जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है. गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट.
11: Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi. Take your partner with us now. Your business will go wow. Call now 7070-7687.

0: Mirchi Mornings brought to you by Kim's Health Medical Center.
1: Well, Jason और टशर की आवाज में ये गाना राइट अराउंड मिर्ची और जुड़ गई है आपके साथ ये आवाज. Very good morning and welcome back. Simply Afreen का साथ है on this beautiful weekend morning. जैसे weekend की बात होती है ना, पर थोड़ा सा ध्यान भटक जाता है मेरा, मैं फिर इधर उधर की बातें करने लगती हूँ. Before I start that, let me get to the point कि भाई हम यहाँ पर game खेल रहे थे और एक ऐसा game जहाँ पर मैं celebrity की आवाज़ सुनाने जा रही थी. And probably ना, this is the last time I'm going to play this game, क्योंकि मैंने सोचा कि अगले महीना नए महीने में कुछ नया गेम मैं लेकर आऊंगी. This is my thought. So, सेलिब्रिटी पहचानो वाला गेम का ये लास्ट वाला सेलिब्रिटी कौन है ये आपने पहचानना है. तो रेडियो सेट्स के वॉल्यूम करो हाई और पहचानो ये आवाज.
2: ज्ञान मत दो जब तक कोई मांगे ना. बिल्कुल ज्ञान नहीं देना चाहिए. जब तक आप इस सामने कोई रिसीवर नहीं है मत दो ज्ञान.
1: All right. कौन है ये जो कह रहे हैं कि भाई बिल्कुल ज्ञान मत दो. बात एक तरह से मुझे बिल्कुल सही भी लगती है. And always ना, this is applicable to millennials. देखो millennials है ना, हमारी बात कोई सुनता नहीं है, हमारा ज्ञान में कोई लेता नहीं है. हमारे से ऊपर जो लोग हैं जिनको लगता है कि वो बहुत तजुर्बे वाले लोग हैं उनको हम ज्ञान देते नहीं है. और जो हमारे से छोटे हैं Gen Z वाले हैं वो किसी की सुनते नहीं है. ये आपको भी ऐसा लगता है ना. वेलकमिंग टू द सेलिब्रिटी 5000 1896 इज माई व्हाट्सएप नंबर जहाँ मैंने आपसे पूछा था कि ये किस सेलिब्रिटी की आवाज़ है. And we have an answer here. Let's hear that.
3: Hi, Afreen. Good morning. This is Prince Sen here.
1: All right.
3: ये आवाज़ सोनू निगम की है.
1: Okay.
3: Have a lovely weekend.
1: You too.
3: Thank you.
1: That is right, Princeton. It is indeed Sonu Nigam ki awaaz. Aur yahan par aur bhi logon ne message kiya hai, lekin unka naam nahi likhte hai. Jaise Azhar ka yahan par message aaya hai. Then I have your Sandhu se messaging us ki haan, ye Sonu Nigam ki hi awaaz hai. And Sonu Nigam ka aaj awaaz sunna zaruri hai, kyunki aaj inka happy wala birthday hai, boss. So bas isi khushi mein Sonu Nigam ki awaaz mein agla gaana play karne wali hu main. But honestly, I was so confused कि मैं कौन सा गाना प्ले करूं. यू कैन रिक्वेस्ट एनी सोनू निगम सॉन्ग. मीनवाइल मेरे पसंद का सोनू निगम का गाना आपके लिए 90s का ये गाना है. अलका याग्निक का भी साथ है इसमें. बॉर्डर का ये गाना. एंड आई जस्ट लव एवरीथिंग अबाउट दिस सॉन्ग. द म्यूजिक, द वॉइस एंड ऑल्सो द लिरिक्स. माइक सदल तक आप ट्रेन के साथ बने रहिएगा.

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: क्या बताओ यार, कंपनी इतनी टॉक्सिक हो गई है मेरी। टीम से सब लोग एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं। अब मैं अकेला ही बच गया हूँ, क्या करूँ?
1: अरे मामू, तो तू छोड़ देना तो कंपनी से क्या टॉक्सिसिटी चली जाएगी।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

ये गाना अमिताभ बच्चन और फरहाना अख्तर की आवाज में, आई थिंक सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड सॉन्ग्स बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप. और आज ना दोस्ती के बारे में खास बात करेंगे. और वजह ये है कि भाई आज है इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे. यस, टू ऑल माय लिसनर फ्रेंड्स आउट देयर, हैप्पी इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे. भाई आप जैसा दोस्त तो जिंदगी में चाहिए ही, जो बिना जाने जो बिना देखे इतना ज्यादा प्यार बरसाते हैं भाई, इतना ज्यादा सपोर्ट करते हैं. वेल लेट्स टॉक अबाउट फ्रेंडशिप. दोस्ती ना शायद दुनिया का एक ऐसा रिश्ता है जो हमें मिलता नहीं है, हम खुद इसे चुनते हैं, है ना. बाकी सारे रिश्ते तो हमें मिल जाते हैं, जिंदगी दे देती है, जैसे माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, लेकिन दोस्त, बॉस, दोस्त तो हम खुद सिलेक्ट करते हैं, इसलिए शायद वो दिल के इतने करीब होते हैं ना. लेट्स गो बैक टू आवर पास्ट. स्कूल की दोस्ती, याद है आपका वो दोस्त? और मेरे ख्याल से ना ये स्कूल के दोस्त आपका कैरेक्टर कहीं ना कहीं बनाने में कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से इन्वॉल्व जरूर रहता है ना. फिर आते हैं आपके कॉलेज वाले दोस्त, जो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में जरूर साथ देते हैं. ऑफ कोर्स, भले ही वो प्रॉक्सी अटेंडेंस के लिए क्यों ना हो, या फिर वो लास्ट मिनट असाइनमेंट्स क्यों ना हो, या फिर महज बंकिंग के लिए क्यों ना हो, है ना. कॉलेज की मस्ती, कॉलेज की दोस्ती, एक अलग ही किस्म का वो एक तरह से नशा था. फिर बात करते हैं एक ऐसी दोस्ती, मेरे ख्याल से ना ये सबसे अंडररेटेड दोस्ती में से कही जाएगी, एंड दैट इज दिस अडल्टहुड. ये अडल्टहुड वाली दोस्ती है ना, जब जिंदगी में EMI होते हैं, डेडलाइंस होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, फैमिली के बीच ये जिंदगी जब उलझ जाती है ना, तब सिर्फ एक दोस्त होता है जो आपके सारे प्रॉब्लम का सलूशन बिल्कुल नहीं देता, लेकिन जब आपको वेंट आउट करना होता है, जब आप थोड़े मुश्किल में होते हो, तो वो दोस्त के पास जाते हो और वो सिर्फ आपको एक कंधा देता है ना. और ऐसा लगता है कि यार यही तो थेरेपी है, और यही तो दोस्ती है, और यही तो सुकून है, जहाँ एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा एक्सेप्टेंस होती है, जहाँ जजमेंट से ज़्यादा आपको सुकून मिलता है. और जब ना ये ज़िंदगी का हमारा कंपास जो है वो घूम जाता है और रास्ते हम भटक जाते हैं, तो गूगल मैप नहीं, बॉस, एक दोस्ती है जो आपको रास्ता दिखाता है और साथ देता है. सो ऑन दिस डे, इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे, आपके दोस्त को भी आप जाके विश कीजिएगा. और मैंने तो मेरा काम कर लिया है भाई, मेरे दोस्त जो हर रोज हमें सुनते हैं, हैप्पी इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे. मैं हूं आफरीन, आपके साथ माइक से दिल तक, एंड हाउ आई कैन नॉट प्ले दिस सॉन्ग. या कॉलेज का फेयरवेल हो, स्कूल का फेयरवेल हो, या फिर ऑफिस का लास्ट डे क्यों ना हो, ये गाना आपको हमेशा याद आता ही है ना. याद कर अपने यारों को और एंजॉय कीजिए गाना. ऑन विच इट्स हॉट.

0: Well, that is such a टंडन की आवाज राइट ऑन मिर्ची और मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है सुबह के 9:15 की तरफ और मुर्गा क्या कहता है आज चलिए जरा सुनते हैं ऑन मिर्ची शॉट
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद

0: ये मरानी बाग की तरफ आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
1: कौन बोल रहे हैं अभी तो बताइए।
0: वो आपका कोई पैकेट है, ये गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। कह रहे थे पूछा उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
1: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो, अभी तो बताओ।
0: मेरे को तो मालूम नहीं, मैं ड्राइवर हूँ।
1: जस्ट बाद लेफ्ट जो जा रही है गली है ना, लाल रंग पेंट हुआ है।
0: अंदर तो आ गया हूँ, इसमें गाड़ी नहीं दिख रही आपको? आपका घटो पहले भी बताओ ना मेरे को।
1: मैं तो बालकनी में खड़ा, आप कैसे पैदल आ रहे हो?
0: मैं तो आ गया हूँ, जिप्सी आ जाएगी, मैं उनको फिर कैसे बताऊँ एड्रेस? वो अंदर आ सकती है, इतनी छोटी तो रोड होगी।
1: कौन कौन आ सकते, किसकी जिप्सी?
0: एक तो समन है आपके नाम का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और पीछे हमारे वो जिप्सी वाले और पुलिस वाले आ रहे हैं, वो आपके घर को रेड वेड मारेंगे।
1: नहीं सर, मैं चक्कर ये, मैं तो अभी घर पे हूँ नहीं।
0: तो मैंने तो सर लैंडलाइन पे किया है फोन।
1: वो भी जो है ना कुछ प्रॉब्लम है, वो
0: आगे वो भी आगे हैं। एक दिन होल्ड करिए, आगे होल्ड करिए। फोन घर पे नहीं है?
1: फोन तो घर पे है, लेकिन मतलब घर घर पे नहीं है। वो क्या, मैं घर पे नहीं हूँ।
0: आगे वो भी आगे, दूसरी भी गाड़ी आ गई है। पागल थोड़ी बन रहा हूँ यार, यहाँ पे दोनों गाड़ी आ गई है। मिलो यार उनसे, समझ लो जो रेड वेड मारेंगे उनसे बात करो, मेरे को पता नहीं है। मैं आप ऊपर ला रहा हूँ,
1: मैं बाद में मिलूंगा आपसे। यहाँ मैं किसी की डेथ में आया हूँ।
0: किसकी डेथ हो गई सर?
1: वो मेरे भाई की डेथ हो गई।
0: रुकिए, आशीष भार्गव सर, आपके फार्म पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स फार्म में आपका ब्रदर तो कोई नहीं है, आपके फादर का नेम है, एक बच्चा है उनका, वो आप हो। आप भाई की डेथ कैसे कर रहे हो?
1: भाई की मैं गलत बोल गया, वो अपने फादर की डेथ हो गई। अचानक ऐसे हो गया, रात वो कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई थी, रात ही फोन आ गया था, रात सुबह में उनकी डेथ हो गई, जो 7-8 किलोमीटर दूर है। आप अभी कहाँ पर रहे हो?
0: मैं कहाँ पर हूँ?
1: सॉरी, आप अभी कहाँ पर हो?
0: मेरे को पहले बता देते कि यार ऐसे वो हो गया।
1: ऐसा है ना, ये देखो हम लोग शरीफ आदमी है, हमारे घर कभी ऐसे पुलिस वुलिस नहीं आई भाई। क्या मतलब मेरे से खुश होने नहीं आ रहा, एक परेशान हूँ मैं।
0: आशीष, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया। मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा
1: यार।
0: थैंक यू।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
3: Going home? Make it rewarding with Kalyan Jewelers.
4: Enjoy 0% making charges on select ornaments. Visit Kalyan Jewelers today. Conditions apply.
5: Salmani to sirf chore kare.
6: Hamari choriyan choron se kam hai ke?
7: Hamara Qatar Bollywood se kam hai ke?
8: Kam hai ke?
9: Qatar ka number one radio station.
10: 89.6 FM, Mirchi 1.
11: It's hot.

0: Mirchi Mornings, brought to you by Kim's Health Medical Center.
1: Well, and that's why I call a colorful weekend. बस अपना कतर है ये, नेर इज नेवर अ डल मोमेंट हियर. वेलकम बैक एंड वेरी गुड मॉर्निंग, आप सुन रहे हो सिंपली आफ्टरनून को. एंड जहाँ वीकेंड की बात करें और इवेंट्स की बात करें, भाई लाइन लगी है बहुत सारे इवेंट्स की, फॉर किड्स, फॉर फैमिली, सभी के लिए. जैसे अगर आप सुखा के वाकिफ की तरफ जा रहे हो, ईस्टर्न प्लाजा जहाँ मैंगो फेस्टिवल भी हुआ था, अब वहाँ पर लोकल डेट फेस्टिवल चल रहा है. मैं इससे बता दूँ ये 10 अगस्त तक चलने वाला है. उसके अलावा देयर इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, ये कलर वर्स एक्सपीरियंस जो है कतारा में जो चल रहा है, ये कुछ पहली बार ऐसा आया है. इट्स एन इमर्सिव, कुछ तो इमेजिनरी, एक अलग ही एक्सपीरियंस है. यहाँ पर आपको जरूर जाना चाहिए. इनफैक्ट आई एम ऑल्सो प्लानिंग दिस वीकेंड और प्रॉब्ली द वीकडे. कभी तो जाऊंगी और जब मैं जाकर आऊंगी आपको एकदम विस्तार में बताऊंगी. बट मीनवाइल यू शुड विजिट दिस विद किड्स, बड़े भी जा सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, मॉल ऑफ कतर जा रहे हो, वहां पर शॉपिंग करने का इरादा है, तो भाई इन टू द जंगल शो ये वहां पर चल रहा है ओएसिस स्टेज पर, जिसकी टाइमिंग्स है 5:30, 7 और रात के 8:30. तीन शोज होने वाले हैं हर रोज ये है. एंड ऑल्सो डिड यू नो दैट कतर टॉय फेस्टिवल, जिसकी धूम मची हुई है एक महीने से, वो भी एक्सटेंड हुआ है. यस, 4 अगस्त तक एक्सटेंड हुआ है, जो यही वीकेंड खत्म होने वाला था, अब थोड़ा और टाइम मिल गया है. एंड देखो बस ऐसे ही उठ के मत जाओ वहां पर, क्योंकि वहां पर जाने से पहले आपको ऑनलाइन टिकट्स बुक कर दें, क्योंकि स्लॉट्स फुल हो जाते हैं, तो ज्यादा बेहतर है. सो वेल, बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई है जो कतर में इस वीकेंड हो रही है. वॉट इज योर पिक, लेट मी नो. 5000186 इज माई व्हाट्सएप नंबर. मीनवाइल अगला गाना आपका इंतजार कर रहा है, माइक से दिल तक आफ्रीन के साथ बने रहिएगा. इट्स हॉट.

0: She can already read what's on your mind. She knows what you are thinking. Coming soon. Stay tuned.
1: Stay tuned.
2: यार बजट टाइट है, शॉपिंग कैसे करें?
3: बजट टाइट तो लुलू फैशन स्टोर चलो।
2: क्यों? वहाँ क्या मैजिक हो रहा है?
3: मैजिक नहीं, हाफ पे बैक।
2: ओहो, एक्सप्लेन करो जरा।
3: सिंपल रेडीमेड गार्मेंट, साड़ी, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग और बेबी एक्सेसरीज पे हाफ पे बैक।
2: ओह, मतलब 200 की शॉपिंग पे 100 वापस।
3: बिल्कुल, और वाउचर रिडीम भी इन्हीं कैटेगरीज में कर सकते हो।
0: ये हुई ना स्मार्ट शॉपिंग, लुलू फैशन स्टोर, हाफ पे बैक, शॉपिंग का स्मार्ट तरीका। स्पेंड QAR 200 एंड गेट QAR 100 फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली। लुलू फैशन स्टोर।

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
7: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसैल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कदर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका

0: अच्छा एक सवाल पूछूं आपको, जिंदगी में सबसे मुश्किल क्या होता है बताओ? किसी नए इंसान को समझना या फिर किसी अपने को दोबारा समझना? वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। और अक्सर ऐसा होता है ना कि लोग वही होते हैं, बस कभी कभार ना नियत बदल जाती है। और बस आज की जो मेरी शायरी है उसी पर बेस्ड है।
1: आफरीन की डायरी से शायरी।
0: तो अर्ज किया है, उल्फत बदल गई नियत बदल गई, खुदगर्ज जब हुए फिर सीरत बदल गई। उल्फत बदल गई नियत बदल गई, खुदगर्ज जब हुए फिर सीरत बदल गई। अपना कसूर दूसरों पर डालकर कुछ लोग समझते हैं, अपना कसूर दूसरों पर डालकर कुछ लोग समझते हैं, हकीकत बदल गई। क्या बात है, कितनी गहरी बात है ना ये। हकीकत कभी बदलती नहीं है, बस लोग उसे अपनी सहूलत के हिसाब से ही कहानी बना देते हैं। लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा दोस्त, देखो लोग बदल जाए तो जरूरी नहीं कि आप भी बदल जाए। अपनी फितरत, अपनी इंसानियत और अपनी सच्चाई हमेशा संभाल कर रखिए, क्योंकि आखिर में वही चीजें सबसे ज्यादा कीमती होती है। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ और मिर्ची इट्स हॉट।

इस फीलिंग के साथ मेरे ख्याल से सब सोनू निगम ही है जो इतने अच्छे से इमोशंस एक गाने में अपने डाल सकते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। और आज ना हमने सोनू निगम के गाने बहुत सुने बिकॉज आज सोनू निगम का बर्थडे है 30th of July। एंड टॉकिंग अबाउट हिम, पता है 3-4 साल की उम्र में ही इन्होंने अपना पहला स्टेज परफॉर्मेंस दिया था और गाना था क्या हुआ तेरा वादा। ऑफकोर्स आई एम सो बेसुरी व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सोनू निगम, लेकिन वो एक चुनौती है ना कि गाना तो गाना है भाई, उस टाइप की हूँ मैं। वेल, सोनू निगम के पेरेंट्स जो थे वो भी म्यूजिकल बैकग्राउंड से थे एंड दैट्स हाउ उनका जो रुचि थी वो म्यूजिक की तरफ इतनी आई। एंड आई वुड से कि ये जो आवाज़ है, ये जो टैलेंट है, ऑफकोर्स इट इज इंडीड इनहेरिटेड फॉर हिम। एंड सोनू निगम और मुझ में ना एक कॉमन बात है। अब आप सोच लो कि क्या भाई, गाती तो सुरीली बिल्कुल भी नहीं है, नाम भी एस से शुरू नहीं होता है, बर्थडे भी जुलाई में नहीं है, बट यस ये है कि 2000 के टाइम की बात है, 2004 या 6 की बात है कुछ तकरीबन, सोनू निगम ना रेडियो शो होस्ट करते थे। उनका एक अपना शो था जिसका नाम था लाइफ की धुन, एंड दैट इज वॉट इज कॉमन है ना। सोनू निगम की फैन मैं 90s से रही हूँ और शायद हमेशा से रहूंगी, क्योंकि उनकी आवाज में जो इमोशंस और एक्सप्रेशंस होते हैं ना, आई डोंट थिंक सो आई हैव कम क्लोजर टू एनी सच सिंगर्स। एंड ऑफकोर्स आई नॉट वॉन्ट टू इंक्लूड किशोर दा एंड रफी साहब इन दिस, है ना। नए सिंगर्स की अगर हम बात करें तो ही इज फिनोमिनल। हैप्पी बर्थडे टू लेजेंडरी सोनू निगम। और सोनू निगम का ही सिर्फ बर्थडे नहीं है, सोनू नाम आज खास है क्योंकि सोनू सूद का भी आज बर्थडे है। वो कहते हैं ना लोगों का मसीहा, ऐसे ही कुछ थे वो कोविड पैंडेमिक के टाइम पर, इतने लोगों की उन्होंने मदद की है एंड अपने आप में एक सुपरमैन कहलाते हैं ये। दैट्स हाउ सोनू सूद इज। हैप्पी बर्थडे टू बोथ ऑफ देम मिर्ची की तरफ से। मैं हूँ आफरीन आपके साथ और हाउ कैन आई नॉट प्ले दिस सॉन्ग व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सोनू निगम। I love the variation Sonu Nigam has shown in the song. Dil Se Ka Ye Gaana, Kavita Krishnamurthy ka saath hai isme, A.R. Rahman ki music. Enjoy this lovely, lovely track and have a fantastic weekend. Tata, bye bye, sayonara, aur apna khayal rakhiyega.

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: यस ऑफ कोर्स, मिर्ची हेल्पलाइन बोलिए।
2: मेरी ऑफिस में मेरे से बेवकूफ लोगों को ज्यादा सैलरी मिलती है, क्या करूँ?
1: ओ माय बॉय, तो तू ये सोच कि असली बेवकूफ कौन हुआ?
3: साले को खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़।

0: only on 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में बज रहे हैं 10। आप सुन रहे हैं मिर्ची वन कतर।
0: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

0: किसी की जिंदगी में साइलेंस का रीजन हर बार डर ही नहीं होता।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हूँ आप, और अचानक से डर और जिंदगी की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग अपने लाइफ में बहुत सारी चीजों को लेके आवाज नहीं उठा पाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यार इस मैटर में बोलने का कोई फायदा नहीं है। इनफैक्ट उनके सर्कमस्टेंसेस उस तरीके के नहीं होते हैं कि वो अपने लिए स्टैंड ले पाए फॉर सर्टेन थिंग्स। सो एज वी ऑल नो, कुछ टाइम पहले बादशाह की शादी के र्यूमर्स आए थे जहां पे उनकी फोटोज ईशा रिक्की के साथ भी काफी वायरल हुई थी, और अब ये र्यूमर्स आ रहे हैं कि इन दोनों का सेपरेशन हो रहा है, जिसपे फाइनली ईशा रिक्की ने साइलेंस तोड़ते हुए अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया कि काफी टाइम तक उन्होंने चुप्पी साधी हुई थी ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट इट वॉज नॉट बिकॉज शी वॉज अफ्रेड, बल्कि वो ओवरवेल्म थी बाई द इन्फ्लुएंस पावर एंड रिसोर्सेज जो उनके हस्बैंड के इर्द गिर्द थे। And now she has decided कि वो silence को कभी भी accept नहीं करेंगी and is going to stop pretending कि हर कुछ उनकी जिंदगी में सही चल रहा है। यार देखो, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, आप एक टाइम तक चीजें बर्दाश्त करते करते उसको चुपचाप सहते सहते जिंदगी बिता लोगे, लेकिन देर इज गोइंग टू बी अ मोमेंट जहां आपके सब्र का बांध टूटेगा और आपसे नहीं ली जाएंगी चीजें। तो प्लीज, अगर ऐसा मोमेंट आता है आपकी जिंदगी में तो अपने लिए जरूर से जरूर स्टैंड लेना, क्योंकि बाबू मोशाय इस दुनिया में आपके पीठ पे सबसे पहले आप ही खड़े हैं आपके सपोर्ट में। बाकी तो समझदार को इशारा काफी। यार मिर्ची पे मैं हूं श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Energy. Escabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. Na vida, la burga.
1: Energy, burga. हेलो।
2: हाय शिवानी।
1: हाय।
2: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
1: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
2: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है? मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
1: समाचार?
2: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
1: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
2: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
1: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
2: अच्छा।
1: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
2: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा
1: कौन बोल रहे हैं?
2: मैं वही बता रहा हूँ शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा देख लूंगा।
1: आपको लेनी है क्या?
2: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे वन सेकेंड चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
1: नहीं, आपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ली ना, खरीद नहीं सकता, मैं सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ है।
2: शिवानी इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
1: आप सिर्फ
2: नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे वन सेकेंड चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
1: नहीं, आपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ली ना, खरीद नहीं सकता, मैं सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ है।
2: शिवानी इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी।

0: अगर आप,
1: आपके घर में कोई नहीं है क्या?
0: नहीं वाइफ है वो गई हुई है कहीं, तो आप थोड़ा सा, आपको अगर कुछ मालूम हो तो एक सेकंड बेटे चुप।
1: आप अपनी वाइफ को फोन करिए ना, उन्हें बुलवाइए जल्दी।
0: नहीं नहीं मैं उनको ही फोन कर रहा हूँ, एक सेकंड। आली है मामा आएंगी, मामा आएंगी। एक सेकंड बहन जी आप होल्ड करेंगी, एक सेकंड सर। आएंगी मामा आएंगी, चीजी लाएंगी बेटे, चीजी लाएंगी। नहीं चुप हो रहा, आई एम सो सॉरी, आपको भी डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं ऐसे।
1: नहीं नहीं हाँ, इसमें डायपर पहना है तो चेक करिए गीला तो नहीं है।
0: एक सेकंड, इधर आओ। हाँ इधर आओ, देखो देखो मामा मामा आ गई, मामा आ गई, चीजी लाई। हाँ डायपर गीला है बहन जी इसका,
1: उतार लीजिए उसको।
0: एक सेकंड रुकिए, ये इसके गले में अटक रहा है डायपर। एक सेकंड,
1: शायद आप बेब उतार रहे हैं उसका।
0: अच्छा ये बेब है, एक सेकंड।
1: देखिए सुसु करा होगा उसने, देखिए।
0: हाँ सुसु ही करा है, सुसु करा। चल
1: उतार दीजिए।
0: एक सेकंड उतार दिया। मैं जी मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा सा कह देंगे, मैं स्पीकर फोन पे लगा देता हूँ, शायद आपकी आवाज से समझ आए जरा। देखो देखो आंटी कर रही है,
1: बस बस
0: क्लैपिंग करो।
1: चुप हो जाओ, पेट दर्द वगैरह ना हो, आप इसको डॉक्टर के पास लेकर जाइए।
0: हाँ मुझे भी वही याद आ रहा है। नहीं बहन जी आप सही कह रही हैं, रात को ना इसने वो मुर्गा खा लिया था जिससे पेट में दर्द हो जाता है और थोड़े बहुत कान खराब हो जाते हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मैंने आपका नंबर डायल किया।
1: और मैं पागल हूँ। ओह नो।
0: अब जरा मेरे साथ प्यार से बोल दीजिए एक बार।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स हॉट।
3: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष।
2: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: स्कूल में, कॉलेज में, शादियों के फंक्शंस में, हर जगह फेमस है ये।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: वेल माय डियर बाबू मोशाय, मैं डांस फेस ऑफ्स की बात कर रही हूँ जो काफी ज्यादा फेमस हैं हम सब के बीच में। एंड ऑफ कोर्स वी नीड टू थैंक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री फॉर द सेम, क्योंकि इतने एपिक डांस फेस ऑफ्स हमने देख लिए हैं बिग स्क्रीन पे कि भाई उसको अपने लाइफ में उतारने का तो मन हो ही जाता है। इसलिए आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एपिक डांस फेस ऑफ्स को डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट DTPH यानी दिल तो पागल है का इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग। अब नंबर दो पे बात करते हैं साल 2002 में रिलीज हुई फिल्म देवदास का गाना डोला रे डोला के बारे में। इस मूवी को डायरेक्ट किया था संजय लीला भंसाली ने, जिसमें माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय बच्चन एंड शाहरुख खान लीड रोल्स में थे। एंड यू नो ये पर्टिकुलर गाना जो है डोला रे डोला, उसको लिखने के लिए एक हफ्ते लग गए थे। द रीजन बीइंग कि इंडस्ट्री की दो सबसे बड़ी मोहतरमाएं इस मूवी में, इस पर्टिकुलर गाने में साथ डांस करने वाली थी। एंड हाउ कैन वी नॉट थैंक सरोज खान फॉर द सेम। गाने में जिस डांस फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कथक एंड भरतनाट्यम। चलो लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और नंबर तीन पे बात करते हैं अबाउट द सॉन्ग दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड फ्रॉम द फिल्म ये जवानी है दीवानी, जो साल 2013 में रिलीज हुई थी, डायरेक्टेड बाय अयान मुखर्जी। बाकी इस गाने में अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान ने जो समा बनाया है, वो समा हर दूसरी शादी में देखने को मिल ही जाता है। कॉम्पोजिशन है इस गाने में प्रीतम दा का एंड लिरिक्स हैं कुमार के। बाकी रणबीर और दीपिका की जोड़ी तो इस गाने में कुछ ज्यादा ही अलग दिख रही है। एंड आई एम 110% श्योर आपके डांस फेस ऑफ वाले प्लेलिस्ट में ये दोनों गाने तो जरूर होंगे, है ना। खैर अभी और ऐसे ही दो गानों की बातें बाकी हैं, बट ऑल ऑफ दैट इन व्हाइल, टिल देन यू एंजॉय द सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची विद दिस लड़की बड़ी फिल्मी जिसका नाम है

0: She can already read what's on your mind. She knows what you are thinking. Coming soon. Stay tuned. Stay tuned.
1: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
2: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
3: बहुत कुछ होगा।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6
6: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: भैया इसके अलग ही नशे हैं।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: ओ हेलो माय डियर बाबू मोशाय, इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, लेट मी टेल यू, मैं डांस फेस ऑफ के नशे की बात कर रही हूँ जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से निकल के हमारे जिंदगी में भी आ चुका है। तभी तो हर दूसरी शादी में आपको लड़के वालों और लड़की वालों की तरफ से डांस फेस ऑफ देखने को मिलता ही मिलता है। तो पांच का पंच हाजिर है मेरे दोस्त। सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट दिल तो पागल है का इंस्ट्रूमेंटल, देन वी टॉक्ड अबाउट डोला रे डोला, तीसरे नंबर पे हमने बात की दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड के बारे में, अब नंबर चार पे बात करते हैं काला चश्मा। हां जी, नित्या मेहरा डायरेक्टोरियल बार बार देखो, जो साल 2016 में आई थी, उसका गाना काला चश्मा, जिसको ओरिजिनली अमर अर्शी ने गाया था, कंपोज किया था प्रेम हरदीप और काम ढिलन ने। एंड यू वोंट बिलीव, ये गाना ओरिजिनली 1991 में रिलीज हुआ था, जिसको फिल्म बार बार देखो के लिए रिक्रिएट किया बादशाह और नेहा कक्कड़ ने। वैसे रिक्रिएशंस कुछ खास पसंद नहीं है मुझे, बट दिस सॉन्ग वॉज वर्थ इट। खैर, लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के फेस ऑफ की। यार, जय जय शिव शंकर फ्रॉम द मूवी वॉर, जो साल 2019 में रिलीज हुई थी, डायरेक्टेड बाय सिद्धार्थ आनंद। इस गाने को स्पेसिफिकली देख के ना बड़ी टेंशन हो रही थी, कंफ्यूजन हो रही थी कि आखिर हम देखें तो देखें किसको। बाकी बेनी दयाल और विशाल ददलानी के म्यूजिक ने तो अलग ही लेवल सेट कर दिया था इस गाने का। एंड टॉकिंग अबाउट द कोरियोग्राफी, हैट्स ऑफ टू बॉस को, जिन्होंने ऋतिक और टाइगर को एक साथ स्क्रीन पे इतना अमेजिंग दिखा दिया। खैर, अगर मेरी इस डांस फेस ऑफ वाले लिस्ट में आप भी कोई गाना ऐड करना चाहो, देन फील फ्री टू डू दैट माय फ्रेंड। MIRCHISHRUTI, दैट इज मिर्ची श्रुति के नाम से मुझसे फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट करो और वहां अपना गाना मुझे भेजो। टिल देन एंजॉय द सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: आलिया, आपकी मम्मी सोनी राजदान बड़ी क्यूट है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं राजी के सेट पे वर यू नर्वस और एक्साइटेड टू वर्क अलोंग विद योर मम, व्हाट वाज द फीलिंग?
3: यू नो, आई वाज वेरी नर्वस, क्योंकि पहले तो मम्मी भी है, पर नंबर वन फर्स्ट माय को एक्टर ऑन सेट, वो मेरी पहली को एक्टर है, मेरी मम्मी नहीं बन सकती. तो मैं नर्वस थी क्योंकि मुझे लगा कि अगर वो नर्वस है तो मैं ज्यादा नर्वस हो जाऊंगी. अगर उनको लाइनें शायद नहीं आते हैं तो मैं कैसे कहूंगी कि उनको नहीं आ रहे हैं. तो आई वाज लाइक, मुझे ऐसा लग रहा है मैं दो लोगों के लिए एक्टिंग करूँ. यू नो, मैं जब वो पहली बार सेट पे आई, पर तब
2: वो आपके जैसी नहीं, आप उनके जैसी हैं. चिकन और एग, व्हाट केम फर्स्ट? मेरे हिसाब से चिकन. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
4: हेलो शॉप्स, आर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है. मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं,
5: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं, येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा.
4: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं,
6: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा.
4: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो.
7: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है, ना इधर उधर भटकना है. गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट.
8: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ. कॉल नाउ 7070-7687.

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माई फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। ब्रह्म मुहूर्त में रिलीज किया गया, लॉन्च किया गया ये ट्रेलर। मैं बात कर रही हूँ नमित मल्होत्रा की अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड प्रोडक्शन रामायण की, क्योंकि इस मूवी के ट्रेलर को आज 4:15 पे रिलीज कर दिया गया है। वेल, इट इज इंडियन सिनेमाज मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म, जिसमें रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश, रवि दुबे और सनी देओल जैसे एक्टर्स नजर आने वाले हैं। बाकी ये फिल्म दो पार्ट्स में रिलीज होने वाली है, जिसका पहला हिस्सा इस साल दिवाली पे आएगा। संजय लीला भंसाली की अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म लव एंड वॉर, जिसमें रणबीर कपूर, आलिया भट्ट एंड विकी कौशल लीड रोल्स निभाते नजर आ रहे हैं, इस फिल्म का फर्स्ट लुक शायद से इस साल दिवाली पे रिलीज किया जाएगा। ऑल्दो इस चीज को लेकर कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं मिली है, बट हाँ, ये फिल्म 21st of January को जरूर रिलीज होगी एंड इट इज गोना कम इन 3 different languages, दैट इज हिंदी, तमिल एंड तेलुगु। एक नहीं, इन दो दो फिल्मों के ट्रेलर्स अटैच किए गए हैं आज रिलीज हो रही स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के साथ। एंड कसम से अभी तो मार्वल फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है। वैसे द टू मूवीज जिनके ट्रेलर्स इस फिल्म के साथ अटैच किए गए हैं आर रामायण एंड अवेंजर्स डूम्सडे। वेल, अभी के लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से ट्रेंडिंग लिस्ट में सिर्फ इतना ही। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: बोल दामिनी बोल। बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है।
1: वो ना, वो पराठे गरम करते वक्त मैं कितना भी ध्यान रखूं, वो जल ही जाते हैं। और मेरी मम्मी इतना गुस्सा करती है, मैं क्या करूं?
0: क्या करूं का क्या मतलब है? जलने वाले तो जलेंगे, तू मम्मी को बोल के किचन में ना खड़ी रहे। सिंपल है।
2: खोपड़ी तोड़।

इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्राई।

एक ऐसी फिल्म जिसका हर लीड कैरेक्टर नेगेटिव था। जरा जरा टच मी, आई एम श्योर आपने गेस कर लिया होगा, और अगर नहीं किया देन लेट मी टेल यू, मैं बात कर रही हूँ अब्बास मस्तान डायरेक्टोरियल फिल्म रेस बाबू मोशाय, जो साल 2008 में रिलीज हुई थी। और इस मूवी में सैफ अली खान, अक्षय खन्ना, अनिल कपूर, बिपाशा बासु, कटरीना कैफ और समीरा रेड्डी जैसे एक्टर्स थे। सो यस, इस फिल्म के जितने भी लीड कैरेक्टर्स आपको नजर आए हैं वो सारे नेगेटिव शेड के हैं, मतलब कोई एक मेन विलन नहीं था, सारे कहीं ना कहीं विलन का किरदार निभा रहे थे। इनफैक्ट अनिल कपूर ने पहली बार अपने करियर में अब्बास मस्तान के साथ काम किया था, और तो और फिल्म का एक एपिक नंबर ख्वाब देखे झूठे मूठे, ये गाना फिल्म के साउंडट्रैक के रिलीज होने के बाद रिकॉर्ड किया गया था। इन शॉर्ट ये गाना फिल्म को अलंकृत करने के लिए बनाया गया था। आई मीन उस बेसिस पे थोड़ा और लोग देखेंगे या फिर इंट्रीग होंगे अबाउट द मूवी, इफ यू नो व्हाट आई मीन। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Energy. Escabana, escabana, sacabana. Rabana. Murga, murga. Na vida la murga.
1: Energy, murga. हेलो
2: आशीष जी, आपका एड्रेस क्या है? ये मैं तीसरी गली पे खड़ा हूँ, ये मरानी बाग की तरफ। आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
1: कौन बोल रहे हैं अभी तो बताइए।
2: वो आपका कोई पैकेट है, ये गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। कह रहे थे पहुंचा उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
1: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो अभी तो बताओ।
2: मेरे को तो मालूम नहीं, मैं ड्राइवर हूँ।
1: जस्ट बाद लेफ्ट जो जा रही है गली, लाल रंग पेंट हुआ है।
2: अंदर तो आ गया हूँ, इसमें गाड़ी नहीं दिख रही आपको? आपका घटो पहले भी बताओ ना मेरे को।
1: मैं तो बालकनी में खड़ा हूँ, आप कैसे पैदल आ रहे हो?
2: मैं तो आ गया हूँ, जिप्सी आ जाएगी, मैं उनको फिर कैसे बताऊँ एड्रेस? वो अंदर आ सकती है, इतनी छोटी तो रोड होगी।
1: कौन कौन आ सकते हैं, किसकी जिप्सी?
2: एक तो समन है आपके नाम का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और पीछे हमारे वो जिप्सी वाले और पुलिस वाले आ रहे हैं, वो आपके घर को रेड वेड मारेंगे।
1: नहीं सर, मैं चक्कर ये, मैं तो अभी घर पे हूँ नहीं।
2: तो मैंने तो सर लैंडलाइन पे किया फोन।
1: वो भी जो है ना कुछ प्रॉब्लम है, वो
2: आ गए वो भी आ गए हैं, आगे वो भी आ गए। एक दिन होल्ड करिए, आगे होल्ड करिए। फोन घर पे नहीं है?
1: फोन तो घर पे है, लेकिन मतलब घर पे नहीं है। वो क्या, मैं घर पे नहीं हूँ।
2: आगे वो भी आ गए, दूसरी भी गाड़ी आ गई है। पागल थोड़ी बन रहा हूँ यार, यहाँ पे दोनों गाड़ी आ गई है। मिलो यार उनसे, समझ लो जो रेड वेड मारेंगे उनसे बात करो, मेरे को पता नहीं है, मैं आप पहला रहा हूँ।
1: मैं बाद में मिलूंगा आपसे, यहाँ मैं किसी की डेथ में आया हूँ।
2: किसकी डेथ हो गई सर?
1: वो मेरे भाई की डेथ हो गई।
2: रुकिए आशीष भार्गव, सर आपके फार्म पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स फार्म में आपका ब्रदर तो कोई नहीं है, आपके फादर का नेम है, एक बच्चा है उनका, वो आप हो। आप भाई की डेथ कैसे कर रहे हो?
1: भाई की मैं गलत बोल गया, वो अपने फादर की डेथ हो गई। अचानक ऐसा हो गया, रात वो कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई थी, रात ही फोन आ गया था, रात सुबह में उनकी डेथ हो गई, जो 7-8 किलोमीटर दूर है। आप अभी कहाँ पर रहे हो?
2: मैं कहाँ पर हूँ,
1: सॉरी आप अभी कहाँ पर हो?
2: मेरे को पहले बता देते कि यार ऐसे वो हो गया।
1: ऐसा है ना, ये देखो हम लोग शरीफ आदमी है, हमारे घर कभी ऐसे पुलिस वुलिस नहीं आई भाई। क्या मतलब मेरे से खुश होने नहीं आ रहा, परेशान हूँ मैं। हर साल का रिटर्न वेटर्न सब फाइल कर देता हूँ वो अभी।
2: आशीष मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया। मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा
1: यार।
2: थैंक यू
1: कुकुड़।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: जा सिमरन, जा जी रहे अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
5: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: श्रुति
1: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
2: और भाई ये सीक्वल के साथ तो रियल लाइफ खोसला बनने वाली है शायद से। मैं बात कर रही हूँ दिव्या खोसला कुमार की, क्योंकि खोसला का घोसला 2 के स्टार कास्ट में उनका नाम भी ऐड हो चुका है। यस यू हर्ड इट राइट। सबसे पहली खुशी की बात तो हमारे लिए ये है कि साल 2006 की कल्ट कॉमेडी खोसला का सीक्वल आ रहा है, जिसमें ओरिजिनल कास्ट मेंबर्स के अलावा कुछ नए नाम भी जुड़े हैं, विच इंक्लूड्स दिव्या खोसला कुमार, रवि किशन एंड दानिश इकबाल। बाकी आई एम रियली एक्साइटेड, क्योंकि आइकॉनिक खोसला फैमिली एक बार फिर से नए चैप्टर के साथ ह्यूमर, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स और इमोशनल मोमेंट्स लेकर आएगी। सो करंटली द मूवी इज अंडर प्री प्रोडक्शन, जिसके रिलीज स्केड्यूल और एडिशनल कास्ट के ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स बहुत जल्द होने वाले हैं। वैसे ऑनेस्टली, अगर आपने अभी तक खोसला का घोसला मूवी नहीं देखी, देन ब्रो आप इस दुनिया में क्या कर रहे हो? अच्छा कंटेंट तो छोड़ रखा है यार, और लगे रहते हो यूं ही इंस्टाग्राम पे डूम स्क्रोलिंग करते हुए। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: She can already read what's on your mind. She knows what you are thinking. Coming soon. Stay tuned.
1: Stay tuned.
2: दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
3: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
4: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
5: खूब मिलेगा, मिलेगा।
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
8: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: यहाँ सपने बार्स बन जाते हैं और बार्स हिस्ट्री।
1: श्रुति, श्रुति, श्रुति।
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हो आप, और एक तरफ बादशाह के सेपरेशन के र्यूमर्स चल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नई अनाउंसमेंट आई है कि भाई बादशाह के साथ EPR, एक्सी, पैराडॉक्स और MC स्क्वायर आ रहे हैं अपने होम ग्राउंड पर, वो भी स्क्वाड बॉसेस बनके। मैं बात कर रही हूँ अबाउट हसल 5, जो सिर्फ हिप हॉप का सेलिब्रेशन नहीं है बट उस कल्चर, कम्युनिटी और जज्बे का भी है जहाँ सपने बार्स बन जाते हैं और बार्स हिस्ट्री। और जिस हिसाब के आर्टिस्ट हमें इस बैटल ग्राउंड से मिले हैं, कसम से ये सिर्फ एक स्टेज नहीं, ये हर रैपर का अपना होम ग्राउंड है, अपना सपना है। वैसे स्पेशल मेंशन टू एक्सी यार, मतलब इस बंदी ने इंटरनेट पे अपने गाड़ी में बैठ के हिप हॉप वीडियोस बनाने की शुरुआत की थी और आज देखो कंसिस्टेंसी हैज ब्रॉट दिस गर्ल सो फार। तभी कहती हूँ मेरे यार कि अपने ड्रीम्स को कभी भी छोटा मत समझो और उसके ऊपर लगातार मेहनत करते रहो। बाकी तो समझदार को इशारा काफी। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ। Stay tuned, it's hot.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: कुणाल खेमू एज एन एक्टर आपको डायलॉग्स याद रखने पड़ते हैं, आपको स्क्रीन प्ले याद रखना पड़ता है. एज ए ह्यूमन बीइंग आपको आपके सपने याद रहते हैं?
3: मुझे एक्चुअली सपने में प्रॉब्लम है, आई डोंट रिमेम्बर माय ड्रीम्स. मुझे अपने सपने याद नहीं रहते, तो आई थिंक विच इज अ गुड थिंग, क्योंकि मुझे नाइटमेयर्स भी याद नहीं रहते. तो आई कैन मैं एक नई शुरुआत करता हूँ हर दिन की.
2: क्लासिक फॉर्मूला है कुणाल खेमू, काश हम भी ऐसा कर पाते. हर दिन की नई शुरुआत. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.

0: नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको कोई धोखा दे रहा है, बात कुछ और है। वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइटर ऑन मिर्ची। और होता है अक्सर कि आप गाड़ी चला रहे हो और आपको महसूस तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तकरीबन 45 के ऊपर या तकरीबन 50 तक, लेकिन आपकी जो गाड़ी वहाँ पर तो 42, 43 यही दिखा रहा है। ये कोई धोखा नहीं दे रहा है, वो इस वजह से है क्योंकि अल मरजाम, ये सुना है आपने? हाँ, ये जो सीज़न है ये शुरू हो चुका है जहाँ पर ह्यूमिडिटी इन कतर इज़ एट इट्स पीक। तो बस ये कुछ सिलसिला ना एक महीने तक चलता रहेगा जहाँ पर बहुत पसीने आने वाले हैं आपके, भले ही वेदर जो है इतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं दिखा रहा होगा। जैसे आज का ही टेम्परेचर देख लो।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
0: वेदर अपडेट। देखो वेदर आज का ये कह रहा है मैक्सिमम टेम्परेचर जो है 43 पर रहेगा और मिनिमम जो है 34 पर रहेगा, लेकिन जो महसूस कर रहे हो आप तकरीबन 48 के करीब ऐसा कुछ महसूस कर रहे हो बिकॉज ऑफ दिस अल मरजम, उस वजह से ही ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है हवा में और आपके पसीने छूट रहे हो और आपको गर्मी हो रही है। लेकिन कोई ना, वो कहते हैं ना हर रात के बाद सवेरा आता है और हर अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर सब कुछ आता है, जिसकी वजह से आपको अब ठंडी के मौसम भी जल्द से जल्द मिलने वाले हैं। सो ऑल इन ऑल गाने सुनते रहिएगा आपके, सो ऑल इन ऑल मजे के गाने आपके लिए लाइन अप है राइट हियर, जो आपको गर्मी में भी ठंडी का एहसास दे। ऑन विच इट्स हॉट
2: वेदर चेक ब्रॉट टू यू बाय आरएसएल ग्रुप ऑफ कंपनी। अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब। फॉर ब्राइट फ्यूचर कॉल नाउ 3100-0813।

वेल, इस मजेदार गाने के बाद थोड़ी सी काम की बातें भी की जाए। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को और खुश तो बहुत होंगे आप आज। भैया 29th of July है, हो सकता है आज ही आपकी सैलरीज खनक गई होगी आपके अकाउंट्स में। अगर नहीं तो वही एक दो दिन की बात है, उसके बाद क्या, एक्सचेंज रेट का सही इस्तेमाल कीजिए और बस पैसे भेजिए। देखिए आज का एक्सचेंज रेट ये कह रहा है दैट 31 रियाल के बदले मिल रहे हैं इंडियन रुपीस 26.29, वहीं जनाब पाकिस्तानी रुपीस इज एट 76.35। बांग्लादेशी टाका की बात करें तो 31 रियाल के बदले मिल रहे हैं 33.98, श्रीलंकन रुपीस वेर एज इज एट 92.26 और 31 रियाल के बदले आपको मिल रहे हैं नेपाली रुपीस 41.96। ये थे आज के एक्सचेंज रेट। घर भेजे पैसे, ढेरों सारी खुशियां और खुशियों का नंबर वन फॉर्मूला, वन एंड ओनली 89.6 machine one, it's hot.

0: जी बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है।
1: मैं जब भी आटा गूंथती हूँ तो आटा मेरे हाथ में चिपक जाता है, क्या करूँ?
0: हाथ में चिपक जाता है? सिंपल तो है, क्या क्या करूँ? पैर से आटा गूंथ, हाथ में नहीं चिपकेगा।
2: रख, रख।

0: बचपन में ना जहां कहीं मुझे ट्विन्स के बारे में पता लगता था कि वो मेरे आसपास एग्जिस्ट करते हैं, आई यूज्ड टू बी रियली एक्साइटेड टू सी देम।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirji. Yes, the concept of twins ना, it used to be very, very new for me. क्योंकि इतने आम तरीके से हमें twins देखने को नहीं मिलते थे ना। हमें जो देखने को मिलता था 90s की movies में, that was डबल रोल। ट्विन्स का कॉन्सेप्ट नहीं पता था हमको, हमको बस ये पता था कि एक बंदा एक दुनिया में जी रहा है और एक बंदा दूसरी दुनिया में जी रहा है, लेकिन दोनों की शक्लें एकदम सेम है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि वो ब्लड रिलेटेड भी नहीं है, ट्विन्स भी नहीं है, भाई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों की शक्लें एक दूसरे की जैसी बिल्कुल डिटो कट कॉपी पेस्ट है। तभी तो 90s के बॉलीवुड ने ऐसे थोड़ी ना दिल में घर कर लिया था, जहां हमें डबल रोल का कॉन्सेप्ट पहले पता लगा और ट्विन्स का कॉन्सेप्ट बाद में पता लगा बॉस। तो चलो फिर आज ना मैंने सोचा है कि मिड डे मोहब्बत में बॉलीवुड की उन फिल्मों के बारे में बात करते हैं जहां पर डबल रोल देखने को मिले थे। और बॉलीवुड में ये कोई बड़ी बात थी कि 90s के दौर में हमें डबल रोल देखने को ना मिले किसी फिल्म में, हर दूसरी तीसरी फिल्म में डबल रोल हुआ ही करता था बॉस। तो आज कौन कौन सी फिल्में आर ऑन द लाइन आपको पता लगेगा इन अ वाइल, लेकिन अभी के लिए मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालती हुई आपसे कह देती हूँ, स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: मिड डे मोहब्बत प्रेजेंटेड बाय Absolute Barbecues. From savory to sweet, experience the ultimate flavors at Absolute Barbecues.
3: कौन है ये जिसने दोबारा मुड़के मुझे नहीं देखा? Who is he?

0: are you?
1: Milchi.
2: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Navid wala burga. Milchi burga.
3: Hello.
4: हेलो मिस्टर गौतम,
3: कौन बोल रहे हैं
4: सर? मैं एक्चुअली आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं सर आप सुना है फिर वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है। मैं जो गाने गाता हूँ ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं।
3: ऐसे कैसे बोल सकते हैं जब तक आपको सुनाएंगे नहीं?
4: पहले मोहल्ले में हमारे स्नेक निकला था, तो स्नेक का ही घुस गया था, तो मेरे को पोले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू, आजा स्नेक निकाल दे। सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ, सर हर तरह के गाने खा लेता हूँ, लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में। सर नागिन क्या है सर? नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
3: सर कुछ गा के सुनाइए।
4: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर वो देखा है ना कोंडा आपने? ना कोंडा फिल्म देखी है?
3: अरे एक काम करो, अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ, उसको भेज दो।
4: वही सर, ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को।
3: एनाकोंडा में कौन से गाने हैं
4: सर? वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं, उसने काम किया ना कोंडा में, यही बात है मेरे लिए। एक पेशकश कर रहा हूँ। ताने डोले मेरा मन डोले, मेरे गले का गया गुजार रे, कौन बजाए बांसुरिया। सर बिच्छू वाला, ये बिच्छू मुझे हाथ खाएगा।
3: सुन ले बात,
4: सुन
3: पहले बात सुन।
4: हाँ सर,
3: और जो बजा रहा है तो ये बंद कर
4: सर बोलिए।
3: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात?
4: जी सर।
3: और जिसने भी ये नंबर दिया है, क्या किसने किसने नंबर दिया था तुझे?
5: मिस्टर गौतम, इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता। आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है, छोटा सा मजाक किया है, मुर्गा बन गया आपका।

0: Nate के साथ only on Mirchi. It's hot.
1: Yep, attack.
2: तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
0: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा,
3: दोनों मिलेगा।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6
6: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: दो जुड़वा बहनें, जिनमें से एक बिल्कुल सीधी सादी और दूसरी एकदम तेज तरार। एक जो थी वो महलों में रहती थी लेकिन ऐश नहीं करती थी। दूसरी जो थी वो बस्ती में रहती थी लेकिन आराम से ऐश करती हुई रहती थी। और ये जो फिल्म है ये है लाइन में लगी हुई, बिकॉज आज डिस्कस होने वाले हैं बॉलीवुड के डबल रोल्स।
2: क्योंकि ये कौन बोला?
3: मेरे दोनों बाप, मेरे दोनों बाप।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and the movie that I'm talking about is चालबाज। ये वो चालबाज है which was most talked about in the 90s। Shridevi ने क्या काम किया ना, and as a double role वाला character, उन्होंने और ही धमाकेदार काम किया। मतलब श्रीदेवी में भी एक पर एक मुफ्त। बट यू नो, इस मूवी के पीछे एक बड़ी बढ़िया सी कहानी है और वो कहानी बोनी कपूर से रेलेवेंट है। ऑफ कोर्स एट दैट टाइम बोनी कपूर और श्रीदेवी का कोई खास लेना देना नहीं था, लेकिन एट दैट टाइम अनिल कपूर और बोनी कपूर, इन दोनों ही लोगों को जब पता लगा कि चालबाज सनी देओल के साथ अनाउंस हो गई है, तो ये दोनों पहुंचे सीधे फिल्म मेकर्स के पास। अब हुआ ये था कि ये वो दौर था जब बोनी कपूर और अनिल कपूर फॉर सर्टन रीजंस बिल्कुल फिल्में नहीं ले रहे थे। उन्होंने जितना भी साइनिंग अमाउंट अगर किसी फिल्म का लिया भी था ना, वो भी वापस दे दिया। लेकिन इसी दौरान जब इन्हें चालबाज के बारे में पता लगा, तो ये प्रोड्यूसर्स के पास पहुंचे कि यार अनिल कपूर को साइन कर लो इस फिल्म के लिए और सनी देओल को बाहर कर लो। जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने कहा कि भाई ऐसे कैसे कर सकते हैं, सनी देओल ने इतनी अच्छी और हिट फिल्म दी है पाप की दुनिया, उसी के बाद तो हमने सनी देओल को इस फिल्म के लिए लिया है। लेकिन अनिल और बोनी कपूर तो अपने प्राइसेस भी कम करने के लिए तैयार हो गए, ताकि प्रोड्यूसर जो है वो टेम्प्ट हो जाए कि सनी देओल को बाहर कर दें और अनिल कपूर को इन। फिर भी प्रोड्यूसर नहीं माने और उन्होंने डिसाइड किया कि वो सनी देओल को ही रखेंगे इस फिल्म के लिए, क्योंकि उन्होंने सनी देओल के साथ तो 3 films का एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया था। सो ही हैड नो इंटेंशंस ऑफ ड्रॉपिंग हिम आउट ऑफ द प्रोजेक्ट। और यहाँ अनिल कपूर, जिनको लगा था कि ये फिल्म उनके हाथ में आएगी, वो आई नहीं। एक तरफ अनिल कपूर और बोनी कपूर इस बात को लेकर सैड हो गए थे, और दूसरी तरफ इस फिल्म के डायरेक्टर पंकज पारशर वाज आल्सो सैड वंस अपॉन अ डे ड्यूरिंग द शूट ऑफ दिस फिल्म। हुआ ये था कि वो जो रोहिणी हतंगड़ी जी के साथ सीन नहीं था श्रीदेवी का, जहां पर वो रोहिणी जी के चेहरे को एकदम पोत देती है बुरी तरीके से, फिर उस सीन के टाइम पर द डायरेक्टर पंकज पारशर वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद द मेकअप जो रोहिणी जी का किया गया था। वो मेकअप वैसा लग ही नहीं रहा था जैसा लगना चाहिए था। तो हुआ ये कि श्रीदेवी ने खुद डिसाइड किया कि वो अपना मेकअप किट लाएंगी और फिर खुद ही रोहिणी जी का फेस जो है उसको पेंट करना शुरू कर देंगी। तो जो हम ये सोच के बैठे थे आज तक कि रोहिणी जी का जो पेंट फेस हुआ हुआ है वो किसी मेकअप आर्टिस्ट ने किया होगा और श्रीदेवी सिर्फ एक्टिंग कर रही है उनका मेकअप करने की, तो ना जी, वो मेकअप श्रीदेवी ने ही किया था रोहिणी जी के चेहरे पर। इसे कहते हैं श्योर प्रोफेशनल। और सीता गीता की ये रीमेक हम सबके दिलों में घर कर गई थी, नहीं क्या? यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: iPay payments ka wah tarika. With iPay, send money starting from just QAR 5 and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
2: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6
3: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: अच्छा ये बताओ, एक और एक क्या होते हैं? अगर आपकी बॉलीवुड की नॉलेज अच्छी है तो आप बोलोगे 11, और अगर आपकी मैथ की नॉलेज अच्छी है तो आप बोलोगे 2, लेकिन मैं बोलूंगी जुड़वा।
2: क्योंकि ये कौन बोला?
3: मेरे दोनों बाप, मेरे दोनों बाप।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और मिड डे मोहब्बत पर आज मेरे यारा हम बात कर रहे हैं 90s की वो फिल्में जहां पर डबल रोल थे, यानी कि एक के साथ एक मुफ्त, और उसमें से एक मेरी वन ऑफ द फेवरेट इज जुड़वा। मतलब मैंने 2 तो नहीं देखी, लेकिन मैं 1 में इतनी खोई हुई थी ना कि मुझसे 2 देखी नहीं गई। एक्चुअली बात ही थी, मगर यार मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर जुड़वा में सलमान खान ना होते तो क्या होता। मुझे ये फिल्म शायद इतनी पसंद भी नहीं आती। आई वॉज अ डाई हार्ड सलमान खान फैन एट दैट टाइम। हाँ, लेकिन एट दैट टाइम एक्चुअली ये फिल्म सलमान खान करने भी नहीं वाले थे, ये फिल्म तो गोविंदा करने वाले थे। एंड ही वॉज डूइंग दिस फिल्म विद अ फिल्म मेकर जिनका नाम था नंदू तोलानी, एंड डेविड धवन वॉज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म ऑफ कोर्स। लेकिन सलमान खान को जब इस प्रोजेक्ट के बारे में पता लगा तो उन्होंने गोविंदा से रिक्वेस्ट करी कि यार प्लीज हैंड ओवर दिस प्रोजेक्ट टू मी एंड साजिद नादियाडवाला। गोविंदा ने हाँ कर दी, एंड दिस इज हाउ सलमान एंडेड अप डूइंग जुड़वा। हालांकि डेविड धवन जो थे उनको बड़ा डाउट हुआ करता था कि सलमान इस तरीके की फिल्म पुल आउट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉमेडी की जरूरत थी यार, और बेतहाशा कॉमेडी की जरूरत थी, वो भी डबल रोल के साथ। ये सलमान खान का पहला डबल रोल था यार, तो डेविड धवन थोड़े से नर्वस थे इस चीज को लेकर। लेकिन जब उन्होंने फिल्म का आउटपुट देखा तो वो खुद हैरान थे कि ये सलमान खान ने क्या कर डाला यार। इनफैक्ट सेट्स पर ये मजाक तो क्रू मेंबर्स भी किया करते थे कि कभी कभी सलमान खान अपने कैरेक्टर राजा की एनर्जी के साथ प्रेम के सीन्स की शूट्स कर लिया करते थे, क्योंकि इन दो कैरेक्टर्स, एक टपोरी स्टाइल राजा और दूसरा मासूम सा प्रेम, इन दोनों ही कैरेक्टर्स का जो शिफ्ट होता था वो बड़ा ट्रिकी हुआ करता था। तो ऐसा भी हुआ करता था। हे बाय द वे, आपको एक अंदर की बात बताऊं, इस फिल्म में रंभा जो सीधे साधे सलमान खान के ऑपोजिट हैं, आपको पता है उनकी आवाज उनकी नहीं है, तबू ने उनकी आवाज इस फिल्म में डब की थी। हाँ जी, कमिंग अप मोर इन्फोज ऑन 90s की डबल रोल वाली फिल्में इन अ व्हाइल। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट
0: मिड डे मोहब्बत
4: प्रेजेंटेड बाय एब्सोल्यूट बारबेक्यूज। फ्रॉम सेवरी टू स्वीट, एक्सपीरियंस द अल्टीमेट फ्लेवर्स एट एब्सोल्यूट बारबेक्यूज।

0: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
1: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार बार बार कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
2: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: यस ऑफ कोर्स, मिर्ची हेल्पलाइन बोलिए।
0: मेरी ऑफिस में मेरे से बेवकूफ लोगों को ज्यादा सैलरी मिलती है, क्या करूँ?
1: ओ माय बॉय, तो तू ये सोच कि असली बेवकूफ कौन हुआ।
2: साले को खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: कितने मजे लिए थे ना जब हमने डी डी वन पे किशन कन्हैया देखी थी, और कितने मजे लिए थे हमने उस बात पर जब चालू वाला अनिल कपूर जो था वो घर के अंदर था और घर वालों की बैंड बजा रहा था। इसीलिए तो सूट बूट में आया था कन्हैया बैंड बजाने को।
2: क्योंकि ये कौन बोला?
3: मेरे दोनों बाप, मेरे दोनों बाप।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And well, पर्दे के ऊपर जो था वो तो हमने बड़े मजे ले लेकर देखा, लेकिन पर्दे के पीछे जो हो रहा था वो ये था कि अनिल कपूर बहुत जबरदस्त मेहनत कर रहे थे अपने इन दोनों किरदारों को एक साथ निभाने के लिए, बिकॉज इट वॉज हार्ड टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू कैरेक्टर्स ना, एक किशन जो कि इनोसेंट सा बंदा है और एक कन्हैया जो बिल्कुल ही स्ट्रीट स्मार्ट बंदा है और ऐसी की तैसी कर देता है लोगों को। Well, ये कहा जाता है कि वो अपने वॉइस मॉड्यूलेशन प्रैक्टिस किया करते थे, उठने बैठने के तौर तरीके अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस किया करते थे ताकि वो ये डिफरेंशिएट कर पाए कि कौन सी बॉडी लैंग्वेज किशन की है और कौन सी बॉडी लैंग्वेज कन्हैया की है, और ये सब वो हफ्तों हफ्तों तक करते रहे। राकेश रोशन ने लेटर एक किसी इंटरव्यू में ये बात कही थी कि किशन कन्हैया की सक्सेस ने उन्हें वो कॉन्फिडेंस दिया जिसकी वजह से वो और बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर पाए, जैसे कि करण अर्जुन एंड देन इवेंचुअली कहूना प्यार है। एंड हे बाय द वे, इन दोनों ही फिल्मों में राकेश रोशन ने डबल रोल के कॉन्सेप्ट से ही फिल्म बनाई है। आई थिंक उनको ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि डबल रोल का कॉन्सेप्ट डबल पैसे भी कमाकर दिखाता है बॉक्स ऑफिस पर, और ये बात बिल्कुल गलत भी साबित नहीं हुई। हाँ, करण अर्जुन और कहो ना प्यारे दोनों ही ब्लॉकबस्टर हिट थी, है कि नहीं? यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: मिडडे मोहब्बत प्रेजेंटेड बाय एब्सोल्यूट बारबेक्यूज, फ्रॉम सेवरी टू स्वीट, एक्सपीरियंस द अल्टीमेट फ्लेवर्स एट एब्सोल्यूट barbecues.

0: Mirchi.
1: Escabana, pues cabana, sacabana. Cabana. Burga, burga. La vieja la burga.
0: Mirchi, burga.
2: हेलो
3: हाय शिवानी
2: हाय
3: हाय शिवानी कंग्रेचुलेशंस मुबारक हो गाड़ी खरीद ली
2: हाँ थैंक यू वेरी मच आप कौन बोल रहे हैं
3: शिवानी कौन सी गाड़ी खरीदी है मुझे तो अभी बताया अरे ग्रेट मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
2: समाचार
3: ग्रेट माइलेज मुझे बताओगे कितना है
2: ठीक ठाक है 13-14 के करीब पड़ जाता है आप कौन बोल रहे हैं
3: अच्छा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में
2: चला रही हूँ काफी दिन हो गए मेरे को पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी मुझे
3: अच्छा।
2: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई
3: ओके शिवानी आप मेरा थोड़ा सा मैं वही बता रहा हूँ शिवानी आप मुझे नहीं जानती हैं अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा देख लूंगा
2: आपको लेनी है क्या
3: नहीं नहीं नहीं मुझे नहीं लेनी अब मैं आपको बता देता हूँ ये हमारा डॉगी है ना इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है तो कोई नई गाड़ी मुझे वन सेकेंड चुप बैठो मैं उनसे बात कर रहा हूँ ज़ोबी शट अप मैं बात कर रहा हूँ उनसे अभी कर लेना शिवानी ये 3 दिन से रोके हुए है इसका हुआ नहीं है नई गाड़ी कोई दिखी नहीं है इसको करना है आप ले आएंगे वो टायर के पास
2: नहीं आपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ली ना खरीद नहीं सकता मैं सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ है
3: शिवानी इतनी हेल्प तो कर दो यार इसका ये कब से रोके हुए वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी
2: आप सिर्फ
3: मेरी बात
2: खर्च के गाड़ी खरीद ले
3: ये सिर्फ 3 अच्छा एक टायर पे करेगा शिवानी एक टायर पे करेगा
2: सिर पे करवा ले
3: शिवानी
2: हेलो
3: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ इसका निकल जाएगा इसका निकल जाएगा इसका निकल जाएगा अच्छा मेरी बात
2: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं खुद के कुत्तों जैसे ना आपने कुत्ते का इलाज
3: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा शिवानी मेरी बात सुनो प्लीज फोन मत काटना शिवानी मेरी बात सुनो
2: नहीं
3: नहीं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ मेरी बात सुन लो प्लीज अतुल ने मुझे नंबर दिया था ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ शिवानी तुम रेडियो मिर्ची पे हो तुम्हारा मुर्गा बन गया है कंग्रेचुलेशन तुमने नई गाड़ी ली है यार ज़ूबी शराब वो गाड़ी ला रही है टायर पे कर लेना
2: कुकड़ू
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट

0: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
1: हमारी चोरियाँ चोरों से कम है के?
2: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
3: कम है के?
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6
4: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते हैं, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: As a काजोल फैन सिर्फ मैं ही नहीं और भी कई सारे लोग इस फिल्म के लिए बड़े एक्साइटेड थे क्योंकि ये फिल्म काजोल की शादी के बाद की पहली फिल्म थी कुछ खट्टी कुछ मीठी
2: क्योंकि ये कौन बोला
1: हाय दिस इज मी सारा आपकी 90s की यादों का पिटारा और आज मिडडे मोहब्बत पर उन फिल्मों की चर्चा हो रही है जहां पर डबल रोल देखे गए हैं और उनमें से एक फिल्म थी कुछ खट्टी कुछ मीठी। हालांकि ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे कुछ बहुत धमाल नहीं किया लेकिन फिर भी ये फिल्म लोगों को बड़ी पसंद आई है बिकॉज ऑफ द रीजन कि काजोल का कैरेक्टर ही ऐसा था यार, इतना क्यूट कैरेक्टर प्ले किया था उन्होंने इस फिल्म के अंदर। शी प्लेड द रोल ऑफ एक्चुअली टू पीपल, एक टीना और एक स्वीटी। टीना जो कि बहुत ही स्वीट शाय एंड ओबीडियंट थी एंड स्वीटी जो बोल्ड मॉडर्न और एकदम ही आउटगोइंग मुंह फट जैसे कि काजोल हैं। एंड दिस वाज वन ऑफ अ रेयर डबल रोल फिल्म्स क्योंकि दुश्मन में भी उन्होंने डबल रोल प्ले किया था लेकिन बहुत ज्यादा टाइम के लिए नहीं। लेकिन हाँ, दिस वाज अ बिग चैलेंज जिनको कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस भी किया और एंजॉय भी किया बिकॉज शी वाज प्लेइंग टू ऑपोजिट पर्सनालिटीज। काजोल की एनर्जी शूटिंग के दौरान इतनी जबरदस्त थी कि वो एक सीन किया करती थी अपना कैरेक्टर का कॉस्ट्यूम जो था उसको चेंज किया करती थी, हेयर मेकअप सब कुछ बदल जाया करता था और फिर वो अपने ट्विन कैरेक्टर के रोल में आ जाया करती थी ऑल इन द सेम डे। इनफैक्ट क्रू तो इस बात का भी मजाक उड़ाया करता था कि काजोल डबल शिफ्ट्स में काम कर रही है, व्हिच वाज नॉट एट ऑल रॉन्ग। एंड इसी के साथ साथ देयर वाज अ लॉट ऑफ फन दैट वाज हैपनिंग ऑन द सेट्स, सो मच सो दैट कि कुछ इमोशनल सीन्स ऐसे थे जहां पर काजोल अपने जोक्स ही मारे जा रही थी जिसकी वजह से होता ये था कि सब हंस दिया करते।

0: थे और ऋषि कपूर स्पेशली हंसते ही रहा करते थे और डायरेक्टर को बार बार टेक लेना पड़ रहा था। मैंने कहा ना, काजोल सिंस देन टिल नाउ हैज बीन स्वीटी, द आउटगोइंग, बोल्ड एंड मॉडर्न, एंड दैट इज हाउ वी लव काजोल। लाइक स्टे ट्यून विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिडडे मोहब्बत
2: प्रेजेंटेड बाय एब्सोल्यूट बारबेक्यूज, फ्रॉम सेवरी टू स्वीट, एक्सपीरियंस द अल्टीमेट फ्लेवर्स एट एब्सोल्यूट बारबेक्यूज।

0: She can already read what's on your mind. She knows what you are thinking. Coming soon. Stay tuned.
1: Stay tuned.
2: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
3: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
4: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 89.6 89.6 FM।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: हालांकि डुप्लीकेट लोगों को बहुत ज्यादा पसंद तो नहीं आई थी, लेकिन मुझे बड़ी पसंद आई थी बिकॉज ऑफ द सोल रीजन यार कि इसमें शाहरुख खान थे, वो भी एक नहीं दो दो।
2: ये कौन बोला?
3: मेरे दोनों बाप, मेरे दोनों बाप।
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और आज मिडडे मोहब्बत पर मेरे यारा उन फिल्मों की चर्चा की जा रही है जो 90s अर्ली 2000 के दौर में बनी और डबल रोल लेकर बनी। वो कॉन्सेप्ट जो आजकल तो हमें देखने को ही नहीं मिलता यार, है ना। थोड़ा सा कम ड्रामेटिक हो गए हैं हम लाइफ में, लेकिन एट दैट टाइम बड़े ड्रामेटिक हुआ करते थे यार। और इसी दौर में बनी डुप्लीकेट, जहां पर शाहरुख खान दो रोल्स प्ले कर रहे थे, एक मन्नू का और एक बबलू का। लेकिन मजेदारी वाली बात तो ये थी कि शाहरुख खान ये जो स्विच ऑन और स्विच ऑफ किया करते थे ना एक रोल से दूसरे रोल के अंदर, तो वो सेट्स पर भी यही कहा करते थे कि यार उनके दिमाग में ना दो चिप्स हैं, एक बबलू की और एक मन्नू की, तो वो उन चिप्स को स्विच करते रहते हैं सो दैट उन कैरेक्टर्स को वो प्ले कर पाए। और सेट्स की एक बात है जो क्रू मेंबर्स कहा करते थे कि शाहरुख खान कभी कभी ये भी किया करते थे मजाक मजाक में कि वो जो विलन वाली एनर्जी थी ना उसको पूरे सेट पर कैरी किया करते थे ऑफ द कैमरा, लोगों को चौंकाने के लिए और फिर सबको हंसाने के लिए। और अगर हंसने की बात की जाए तो जूही चावला भी कोई कम नहीं थी। वो शाहरुख खान की बातों पे इतना हंसा करती थी, इतना हंसा करती थी कि भाई एक टाइम तो ऐसा आया कि जब ये गाना शूट हो रहा था ना एक शरारत, उस टाइम पर उनकी हंसी रुकी नहीं रही थी। इवेंचुअली उसकी वजह से हुआ ये कि इस गाने में इतने रीटेक्स दिए गए और लिए गए कि इसका जो स्केड्यूल है वो ही स्ट्रेच हो गया। एक व्हाट्सएप मैसेज और दूसरी हंसी, ये दो ऐसी चीजें हैं जो कहीं भी आ सकती है। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इज हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Boulder. Only on Mirchi. It's hot.
1: माधुरी जी, आप अपने ग्रेस, एलिगेंस, पॉइज, अदा, इन सब के लिए जानी जाती हैं। असली में माधुरी दीक्षित कौन है?
2: The elegance and this and that, everything inside is me is like a mad person. And I love mad comedies. And I love these kind of situations which are like larger than life. वो कुछ अजीब सा हो रहा है इनके साथ. अजीब से characters हैं सब. You know, सब पागल, unhinged kind of characters.
1: अब समझी, इसीलिए लोग प्यार से आपको मैड्स भी बुलाते हैं। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डर, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat
1: presented by Absolute Barbecues. From savory to sweet, experience the ultimate flavors at Absolute Barbecues.
2: Sara zamana sara ka deewana.
3: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
4: सुनील शेट्टी कॉमेडी भी कर सकते हैं, ये बात तो हमको तब पता लगी जब हमने देखी गोपी किशन।
5: क्योंकि ये कौन बोला?
6: मेरे दोनों बाप, मेरे दोनों बाप।
4: और इसी फिल्म से तो ये फेमस डायलॉग आया था जो आज तक भी एपिक लाफ्टर की वजह बन गया है। हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और आज मिड डे मोहब्बत पर 90s के डबल रोल्स की चर्चा हो रही है, जिसमें से सुनील शेट्टी का ये डबल रोल तो किसी को नहीं भूलता यार, एक गोपी का और एक किशन का। बोलो गोपी, टेल टेल। वेल, इससे पहले एक्चुअली सुनील शेट्टी जो थे ना, वो एक्शन हीरो ही थे, तो इसीलिए सबको डाउट था यार कि ये कॉमेडी भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या कॉमिक टाइमिंग थी यार उनकी, मतलब वो मास फेवरेट हो गए थे इस फिल्म के बाद। लेकिन कॉमेडी के साथ साथ इस फिल्म में एक्शन भी था, और एक एक्शन सीक्वेंस के दौरान हुआ ये था कि सुनील शेट्टी को चोट लग गई थी बुरी तरीके से, लेकिन फिर भी उन्होंने शूटिंग डिले नहीं करी एंड ही कैरीड ऑन विद हिज इंजरी एंड द शूट एज वेल। लेटर ऑन ड्यूरिंग एन इंटरव्यू जब सुनील शेट्टी से पूछा गया कि गोपी का कैरेक्टर उनके कैरेक्टर से ज्यादा मेल खाता है या किशन का, तो उन्होंने किशन के लिए ऑप्ट आउट किया था, क्योंकि ऑफ कोर्स गोपी इतना भोला भाला, दुनिया खा जाए उसको, कौन गोपी बनना चाहेगा उस दौर में भी और आज के भी दौर में। लेकिन सुनील शेट्टी गोपी बने, और क्या गोपी बने। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स ऑल

मेरा सब कुछ तू अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तू वो है जिसके लिए मैं सांस

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na vidba la burka. Milci, burka.
2: Hello.
3: Hello.
2: Hello.
3: Hello, Ben ji.
2: हाँ जी,
3: ये एक सेकंड, ये बहन जी, हम आपके पड़ोस में रहते हैं। ये मेरा एक्चुअली बच्चा बहुत रो रहा है और मेरी वाइफ का फोन लग नहीं रहा है। वो बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है। अगर
2: आपके घर में कोई नहीं है क्या?
3: नहीं, वाइफ है, वो गई हुई है कहीं। तो आप थोड़ा सा, आपको अगर कुछ मालूम हो तो एक सेकंड बेटे। चुप,
2: आप अपनी वाइफ को फोन करिए ना, उन्हें बुलवाइए जल्दी।
3: नहीं नहीं, मैं उनको ही फोन कर रहा हूँ। एक सेकंड। आली है, मामा आएंगी। एक सेकंड बहन जी, आप होल्ड करेंगी? एक सेकंड सर। आएंगी मामा, आएंगी, चीजी लाएंगी बेटे, चीजी लाएंगी। नहीं, चुप हो रहा। आई एम सो सॉरी, आपको भी डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं ऐसे।
2: नहीं, इसमें डायपर पहना है तो चेक करिए, गीला तो नहीं है।
3: एक सेकंड, इधर आओ। हाँ, इधर आओ, देखो, मामा आ गई, चीजी लाई। हाँ, डायपर गीला है बहन जी इसका,
2: उतार लीजिए उसको।
3: एक सेकंड रुकिए। ये इसके गले में अटक रहा है डायपर। एक सेकंड,
2: शायद आप बेब उतार रहे हैं उसका।
3: अच्छा, ये बेब है। एक सेकंड,
2: डायपर देखिए, सुसु करा होगा उसने, देखिए।
3: हाँ, सुसु ही करा। चुप,
2: उतार दीजिए।
3: एक सेकंड, उतार दिया। मैं जी, मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा सा कह देंगे, मैं स्पीकर फोन पे लगा देता हूँ, शायद आपकी आवाज से समझ आए जरा। देखो, आंटी कर रही
2: क्लैपिंग करो।
3: हाँ, मुझे भी वही याद आ रहा है। नहीं बहन जी, आप सही कह रही हैं। रात को ना इसने वो मुर्गा खा लिया था, जिससे पेट में दर्द हो जाता है और थोड़े बहुत कान खराब हो जाते हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मैंने आपका नंबर डायल किया।
2: और मैं पागल हूँ।
3: अब जरा मेरे साथ प्यार से बोल दीजिए एक बार।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
4: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष।
0: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Dear Meethi Supari,
2: यादों को चिट्ठी।
1: तुम्हें याद करते ही ना एक खुशबू सी आती है जो तुम्हारा पैकेट खोलते ही आया करती थी। भीनी भीनी सी, मीठी मीठी सी। तुम्हें खाना हम बच्चों को वैसे अलाउड नहीं था और अक्सर मैं तुम्हें खरीदती भी नहीं थी, लेकिन कुछ दुनिया की परवाह ना करने वाले क्लासमेट्स के बैग में तुम अक्सर मिल जाया करती थी। और जब कभी कभी तुम्हें चखती थी ना, तो मजे और ज्यादा आया करते थे, क्योंकि जो कम होता है उसकी वक्त भी तो ज्यादा हो जाती है। क्या बोलती हो? तुम्हें जुबान पर रखना बुरा माना जाता था और कहते थे कि तुम सेहत को हानि पहुंचाती हो, लेकिन आज मेरी याद में तुम आंखों में पानी पहुंचाती हो, क्योंकि तुमसे जुड़े किस्से बचपन की शैतानी और दोस्तों के किस्सों के याद दिलाते हैं। थी मेरी एक दोस्त जिसके मार्क्स अच्छे नहीं आया करते थे और सब उससे इसी वजह से दूर भाग जाया करते थे, लेकिन वो मस्त रहने वालों में से थी। तुम अक्सर उसी के पास पाई जाती थी और क्लास में सो कॉल्ड अच्छे बच्चे उसके बारे में खुसुर पुसुर किया करते थे। आज तुम्हें याद करते करते उसकी याद आ गई यार, कि उसके साथ जो होता था वो बॉयकॉट नहीं तो क्या था। मुझे भी बोला जाता था कि तुम अच्छी बच्ची हो, उसके टच में मत रहा करो। आज सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि यार इतनी कम उम्र में ये सब हमें सिखाने की कोशिश की जाती थी, लेकिन आज मुझे ना इस बात का भी ख्याल आता है कि कितनी हिम्मत थी यार मेरी उस दोस्त में, जो ये सब जानकर भी अपनी दुनिया में मस्त रहने की कोशिश किया करती थी। पता नहीं कि वो वाकई में स्ट्रांग थी या स्ट्रांग होने की एक्टिंग किया करती थी। आज तक नहीं पता लगा मुझे इस बात का। स्कूल बदला तो ना उससे टच में रही और ना तुमसे इतनी ज्यादा मुलाकात होती थी फिर, क्योंकि तुम्हें खिलाने वाला कोई था नहीं ना, लेकिन तुम दोनों ही मेरे ख्यालों में तब भी थे और आज भी हो। वो मुस्कुराती हुई और तुम महकती हुई, तुम्हारी भीनी भीनी खुशबू में आज भी खोई हुई तुम्हारी पुरानी दोस्त सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, कॉज इट्स हॉट।
0: मिडडे मोहब्बत प्रेजेंटेड बाय एब्सोल्यूट बारबेक्यूज, फ्रॉम सेवरी टू स्वीट, एक्सपीरियंस द अल्टीमेट फ्लेवर्स एट एब्सोल्यूट बारबेक्यूज।

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसलिए मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: सोनू निगम, श्रेया घोषाल एंड सलीम मर्चेंट की आवाज में दिस गाना फ्रॉम द फिल्म कुर्बान इज कैसेट के साइड ए का पहला गाना।
2: मिर्ची 90s कैसेट।
1: वेल, द ट्रैक जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ एक गाना नहीं है, दिल का सुकून भी है।
3: शुक्र

ये बात तो सच्ची है कि जो हम आम लोग हैं अपनी आम जिंदगी में वो लव्स कहीं कहीं से ढूंढ कर नहीं ला पाते हैं जो गानों में हमें मिल जाते हैं। नाउ ये गाना इतना खूबसूरत है और इतनी खूबसूरती से ये ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहा है कि उसने हमें उस इंसान से मिला दिया जिसे मिलने के बाद हमें सुकून मिलता है। रूह को सुकून मिलने वाले लोग कितने कम मिलते हैं ना जिंदगी में, और जब वो मिल जाए तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करने के लिए ये गाना बिल्कुल एप्ट है। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, हमें लव्स नहीं मिल पाते हैं, हमें बस महसूस हो रही होती है कोई बात, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि इसे लफ्जों में कैसे बयां करें। वहीं ये गाना आता है जो ये कह रहा है कि तेरी बाहों में ये जिस्म खिल गया, तेरी सांसों में चैन मिल गया, कैसे रहें अब हम जुदा। वहीं ये गाना हमारी मदद कर देता है क्योंकि इस गाने में यही तो शुक्रिया अदा किया गया है कि यार किस तरीके का सुकून मिला है एक इंसान से मिलने के बाद कि उसकी बाहों में ये जिस्म खिल गया है, उसकी सांसों में चैन मिल गया है, और कैसे रहा जाए उस इंसान से अब जुदा। तेरे पास हम इतने हुए, तेरे ख्वाब अपने हुए, ऐसे हुए अब हम फिदा। और इसी बात पर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हुए कहा गया है कि ऐसी उसकी इनायत, मिट गई हर शिकायत, हम पे मेहरबान दो जहां। एंड दिस सॉन्ग इज ऑल अबाउट ग्रैटिट्यूड, जो हमारी जिंदगी में प्यार के आने पर हम महसूस कर पाते लेकिन उसे कह नहीं पाते। तो बस जी, ये गाना आपके दिल की बात को कंप्लीट करते हुए आप ही के लिए लगाती हुई जा रही हूँ, और आपसे कहती हूँ अब कि हम है रहे प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा, और यहाँ के अलावा मुझे मिल जाइएगा ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, 'cause इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: हाल ही में रवि किशन ने जो होम फ्रॉम वर्क की बात छेड़ी है, मुझे ऐसा लगता है कि रवि किशन जेन्युइनली एक फनी इंसान है। तृप्ति डिमरी, आपको क्या लगता है?
3: He is just too funny. Like whatever he says, it's funny. He's कुछ लोग होते हैं ना जिनमें ह्यूमर इनबिल्ट होता है। आई थिंक ही इज वन ऑफ दोस पीपल।
2: तृप्ति डिमरी स्पिलिंग सम ट्रूथ बॉम्ब्स ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.
4: Hello, Sharps. Our product is phenomenal. One of a kind, but still profit नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं
5: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
4: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
6: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
4: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
7: भाई क्या कर रहा है तू? जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
8: Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi. Take your partner with us now. Your business will go wow. Call now. 7070-7687.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: बोल दामिनी बोल। बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है।
0: वो ना वो पराठे गरम करते वक्त मैं कितना भी ध्यान रखूं वो जल ही जाते हैं और मेरी मम्मी इतना गुस्सा करती है, मैं क्या करूं?
1: क्या करूं का क्या मतलब है? जलने वाले तो जलेंगे, तू मम्मी को बोल के किचन में ना खड़ी रहे। सिंपल है।
2: खोपड़ी तोड़ दे, खोपड़ी।

0: शाम शानदार ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 कतर में बॉलीवुड का मिर्ची वाला तड़का इट्स हॉट शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर मिर्ची फ्रेश माल।
1: इमरान हाशमी के सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट हिट्स दोनों का रिश्ता पुराना है। उनकी अगली म्यूजिकल ऑफरिंग है ये आवारापन।

0: इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: ये आवारापन अरिजीत सिंह की आवाज में गाना सुनाया अपन। जब मैं आपके साथ हूँ तो मुझे ये कहते हुए बिल्कुल अच्छा लग रहा है कि हम बड़े इंटेलिजेंट हैं और उससे ज्यादा आप। शाम के 4:05।
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
1: अरे ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ भैया, दोहा की रैंकिंग आई है, नंबर जो इंटेलिजेंट सिटीज है उसमें नंबर अच्छे से आ गया है। यस, वर्ल्ड की इंटेलिजेंट सिटीज में हमारे दोहा का भी नंबर लगा है एंड कह सकते हैं अक्रॉस 39 कंट्रीज 61 मेजर अर्बन सेंटर्स को अगर ध्यान में रखें तो हमारे कतर को वन ऑफ द इंटेलिजेंट सिटीज में अपनी जगह बनाने का मौका मिला है। अब आगे इसके बारे में डिटेल से बातचीत करेंगे, आप किस तरह से अगला आईफोन जरूर ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे एंड उसके किराए पर ले पाएंगे सब कुछ बताएंगे, एंड सिविल एविएशन अथॉरिटी ने क्या कहा है वो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट के लिए यानी कि ड्रोन्स के लिए, वो भी हम आप तक कानून पहुंचाएंगे। लेकिन यही रहना पड़ेगा आपको हमारे साथ क्योंकि मौसम जनाब जो है एक जबरदस्त तरीके से बनाया हुआ माहौल गर्मी का। हमें तो कहा गया था कि कतर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग बारिश होगी, हालांकि कहीं दिख तो नहीं रहे आसार, बट यू नेवर नो, चंद घंटों में चीजें बदल जाती हैं, वक्त बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं, क्या पता ये भी बदल जाए। फिलहाल तो शुरुआत करते हैं शाम शानदार की, वीकेंड वाइब के साथ हैं आज। हां जी, कल फ्राइडे छुट्टी का दिन, मिर्ची इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vidva la burga.
1: Milci, burga. हेलो
2: आशीष जी, आपका एड्रेस क्या है? ये मैं तीसरी गली पे खड़ा हूँ, ये मरानी बाग की तरफ। आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
1: कौन बोल रहे हैं अभी तो बताइए।
2: वो आपका कोई पैकेट है, ये गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। कह रहे थे पूछा उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
1: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो, अभी तो बताओ।
2: मेरे को तो मालूम नहीं, मैं ड्राइवर हूँ।
1: जस्ट बाद लेफ्ट जो जा रही है गली, लाल रंग पेंट हुआ है।
2: अंदर तो आ गया हूँ, इसमें गाड़ी नहीं दिख रही आपको? आपका घटो पहले भी बताओ ना मेरे को।
1: मैं तो बालकनी में खड़ा हूँ, आप कैसे पैदल आ रहे हो?
2: मैं तो आ गया हूँ, जिप्सी आ जाएगी, मैं उनको फिर कैसे बताऊँ एड्रेस? वो अंदर आ सकती है, इतनी छोटी तो रोड होगी।
1: कौन कौन आ सकते, किसकी जिप्सी?
2: एक तो समन है आपके नाम का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और पीछे हमारे वो जिप्सी वाले और पुलिस वाले आ रहे हैं, वो आपके घर को रेड वेड मारेंगे।
1: नहीं सर, मैं चक्कर ये, मैं तो अभी घर पे हूँ नहीं।
2: तो मैंने तो सर लैंडलाइन पे किया है फोन।
1: वो भी जो है ना, कुछ प्रॉब्लम है। वो
2: आ गए वो भी आ गए हैं, आगे वो भी आ गए। एक मिनट होल्ड करिए, आगे होल्ड करिए। फोन घर पे नहीं है?
1: फोन तो घर पे है, लेकिन मतलब घर पे नहीं है। वो क्या, मैं घर पे नहीं हूँ।
2: आगे वो भी आ गए, दूसरी भी गाड़ी आ गई है। पागल थोड़ी बन रहे हो यार, यहाँ पे दोनों गाड़ी आ गई है। मिलो यार उनसे, समझ लो जो रेट वेट मारेंगे उनसे बात करो, मेरे को पता नहीं है। मैं आप पहला रहा हूँ,
1: मैं बाद में मिलूंगा आपसे। यहाँ मैं किसी की डेथ में आया हूँ।
2: किसकी डेथ हो गई सर?
1: वो मेरे भाई की डेथ हो गई।
2: रुकिए आशीष भार्गव, सर आपके फार्म पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स फार्म में आपका ब्रदर तो कोई नहीं है, आपके फादर का नेम है, एक बच्चा है उनका, वो आप हो। आप भाई की डेथ कैसे कर रहे हो?
1: भाई की मैं गलत बोल गया, वो अपने फादर की डेथ हो गई। अचानक ऐसा हो गया, रात वो कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई थी, रात ही फोन आ गया था। रात सुबह में उनकी डेथ हो गई, जो 7-8 किलोमीटर दूर है। आप अभी कहाँ रहे हो?
2: मैं कहाँ रहा हूँ,
1: सॉरी आप अभी कहाँ पर हो?
2: मेरे को पहले बता देते कि यार ऐसे वो हो गया।
1: ऐसा है ना, ये देखो हम लोग शरीफ आदमी है, हमारे घर कभी ऐसे पुलिस वुलिस नहीं आई भाई। क्या मतलब मेरे से खुश होने नहीं आ रहा, एक परेशान हूँ मैं। हर साल का रिटर्न वेटर्न सब फाइल कर देता हूँ वो अभी।
2: आशीष मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया। मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा
1: यार।
2: थैंक यू
1: कुकुड़।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
4: इट्स पटाक।
5: Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
6: अर्ज किया है
7: इरशाद, इरशाद

0: IP payments ka wah tarika. With IP, send money starting from just QAR 5 and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the IP app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. IP, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: ओ भाई जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
2: 89.6
3: 89.6 FM मिर्ची वन इट्स हॉट।

0: एक ही श्रेया घोषाल के पास नहीं, मी मी गाना भाई सुनाया किसने? मेरे साथ चल रहा है मेरा शो शाम शानदार।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
0: एंड हमारे कतर में इंटेलिजेंट लोग रहते हैं, अब ये तो रिपोर्ट भी कहती है। #974974 में से एक बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप बोल के एक बकायदा कंपनी है जिसने एक बड़ा सर्वे बाहर निकाला, और इस सर्वे में ये बात सामने आई है कि इंटेलिजेंट सिटीज इंडेक्स में लगभग दुनिया के 60 से ज्यादा देशों में हमारे कतर को भी स्थान मिला है। यस, फाइनली बस इतना ही कहना चाहता हूं कि वर्ल्ड्स इंटेलिजेंट सिटी का टैग हमारे कतर पर भी आ गया है। 61 ग्लोबल सिटीज को चेक किया गया, वहां पर कितना AI या स्मार्ट टेक्नोलॉजी यूज किया जा रहा है, और दोहा को इमर्जिंग मैच्योरिटी वाली कैटेगरी में टोक्यो एंड हांगकांग के साथ स्थान मिला है। यानी कि हम टोक्यो और हांगकांग की तरह स्मार्ट एंड AI यूज करने वाले शहर हैं। एंड इतना ही कहना चाहता हूं कि ये बता रहा है कि वो दिन दूर नहीं कि कतर जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, अपने आप को ग्लोबलाइज कर रहा है, डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजीज का यूज हो रहा है, हम इसमें टॉप 10 में भी आ सकते हैं। तैयार हो जाइए। वैसे बात करें तो इसमें सऊदी का एक शहर यस रियाद भी है, एंड इसके अलावा दुबई को भी इसमें जगह मिली है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कतर ने अपनी जगह बनाकर दुनिया को यह बता दिया है कि भैया यहाँ स्मार्टेस्ट लोग रहते हैं जी, हमारे कतर में हम और आप भी रहते हैं, हमारे पास भी इंटेलिजेंट का टप्पा तो लग ही जाएगा। भले ही वो बात अलग है, मैं अपने दिमाग का भी सिर्फ 1% यूज कर

0: धुरंधर ये गाना सुनाया किसने? वेल, इन सब के बीच जब गाना सुना दिया है तो बातें भी सुनाएंगे, एंड जो नियम कानून नए आए हैं भाई ड्रोन को लेकर, वो आपके कानों तक हम ही तो पहुंचाएंगे। #9749 हम आपको बता दें, कतर में अनमैन्ड एयरक्राफ्ट्स को लेकर, ड्रोन को लेकर एक नया लॉ नंबर 10 ऑफ 2026 पास आउट हुआ है, एंड विद एन इंटरव्यू एट कतर टीवी, नाइफ नासिर अल जाबेर जो की डायरेक्टर ऑफ एयर सेफ्टी डिपार्टमेंट एट QCAA है, उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि ये लॉ किस तरह से काम करेगा। उन्होंने बताया है कि इंडिविजुअल्स को एक लाइसेंस जो है, लाइसेंस वो नेसेसरी वाला लाइसेंस ले लेना है, और ऑपरेशनल परमिट जो है वो मैंडेटरी है। अगर आप कतर में ड्रोन उड़ाना चाहते हैं तो आपको ये ऑपरेशनल परमिट लेना ही पड़ेगा, और लाइसेंस और ऑपरेशन परमिट के बाद ही आप यहाँ पर ड्रोन फ्लाइट्स कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आप इन सबको बिना किए किसी तरह जुगाड़ का फॉर्मूला लगाने की कोशिश करेंगे तो जेल की चक्की पीसिंग फतूरा कटिंग फलूस जाइंग हो जाएगा। इसलिए प्लीज जितना भी हो सके इन सारे रूल्स से अवॉइड कीजिए। जहां पर नेसेसरी लाइसेंसेस लेने की बात है, आपको लेने ही चाहिए। किसी भी तरह के रूल एंड रेगुलेशंस को मत तोड़िएगा, क्योंकि अब ड्रोन रिलेटेड सारे ऑपरेशंस जो हैं वो एक यूनिफाइड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के थ्रू होंगे, जहां पर आपको अलग अलग एंटिटीज से जो लाइसेंसिंग मिलती है वो एक जगह मिल जाएगी, लेकिन QCAA से कोऑर्डिनेट कर ही ये पूरा काम होगा। बिल्कुल मिलाकर मुझे लगता है एक मुल्क में जब किसी चीज का कानून पारित होता है तो उसके अवॉइड करने के लिए हम सब जिम्मेदार होते हैं, एंड आई एम श्योर ये हमारी आपकी सेफ्टी के लिए हो रहा है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, अगर आप अपना सेफ चाहते हैं जीवन, तो उसके लिए जरूरी है कि इस पर भी ध्यान दें। मेरे मान्यवर 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट।
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: iPay payments ka wah tarika. With iPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply. कतर में हैं और ड्राइविंग लाइसेंस भी है, क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की?
1: तो इंतजार खत्म, RSL ग्रुप ऑफ कंपनीज लेकर आया है एक सुनहरा मौका स्टेबल इनकम के साथ।
0: अभी कॉल करें 3100813।
2: कभी प्यार का एहसास और कभी खुद को दिया हुआ एक खूबसूरत तोहफा। फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स इज बैक एट तनिष्क। रोज पहनने के लिए स्टाइलिश डिजाइन हो या किसी खास मौके के लिए स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी, हर पीस में है तनिष्क का भरोसा और बेहतरीन क्राफ्ट्समैनशिप। यही नहीं, गेट अ फ्री गोल्ड कॉइन ऑन एवरी 3000 रियाल्स स्पेंट ऑन डायमंड परचेसेस। तो आज ही विजिट करें तनिष्क एट लुलु हाइपर मार्केट, डी रिंग रोड एंड दोहा फेस्टिवल सिटी टुडे। Supply.
3: दोस्ती का गुस्सा है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
4: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
5: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
6: खूब मिलेगा, मिलेगा।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6 FM, मिर्ची वन। It's hot.

0: तो हम भी आपका नहीं रखे हैं सूरज चाचू, तो किस बात के लिए इतनी चमकान दिखा रहे हो? हाँ जी मस्त मौला गौरव आपके साथ है बरखुदार, लेकिन मौसम हमारा अभी भी साथ नहीं दे रहा और आप मेरे साथ सुन रहे मेरा शो शाम शानदार।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
0: मतलब यार गर्मी अपने चरम पे लगी हुई है और हम चाह रहे कम हो जाए।
2: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
1: वेदर अपडेट
0: बताइए, मतलब शाम के 5 बजने को आ गए, 9:45 के करीब हो गए, लेकिन उसके बाद भी टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। दिन का मैक्सिमम 43 पहुंचा था और अभी तक ये बरकरार है। शाम होते होते थोड़ी बहुत हवाएं चलेंगी, लेकिन ये किसी काम की नहीं रहेंगी क्योंकि ह्यूमिडिटी लगातार घेरे हुए है। हवाओं की रफ्तार जहां 14 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास, वही ह्यूमिडिटी एट 35%। हमें थोड़ा बहुत तो दिक्कत फील कराएंगी, लेकिन समय के साथ हमें लगा था मौसम का टेम्परेचर जो है नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अभी अगले कुछ दिनों तक 42-43 ही रहेगा और हमें ह्यूमिडिटी धीरे धीरे बढ़ती ही दिखाई दे रही है, इसलिए घबराना नहीं है। पानी पीजिए, सूरज चाची को कोसिए, देखिए कैसे जल्दी जल्दी अगस्त के बाद सितंबर आ जाएगा, अक्टूबर आते तक ठीक होगा, नवंबर में मजा आ जाएगा। मिर्ची इट्स हॉट।
1: वेदर चेक ब्रॉट टू यू बाय RSL ग्रुप ऑफ कंपनी। अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब। फॉर ब्राइट फ्यूचर कॉल नाउ 3100-0813।

0: बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: आलिया, आपकी मम्मी सोनी राजदान बड़ी क्यूट है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं राजी के सेट पे were you nervous or excited to work along with your mom? What was the feeling?
2: You know, I was very nervous क्योंकि पहले तो मम्मी भी है, पर number one, first my co-actor on set, वो मेरी पहली co-actor है, तेरी मम्मी नहीं बन सकती। तो मैं nervous थी क्योंकि मुझे लगा कि अगर वो nervous है तो मैं ज्यादा nervous हो जाऊंगी। अगर उनको लाइने शायद नहीं आते हैं तो मैं कैसे कहूंगी कि उनको नहीं आ रहा है। तो आई वाज लाइक, मुझे ऐसा लग रहा है मैं दो लोगों के लिए एक्टिंग कर रही हूँ। यू नो, मैं जब वो पहली बार सेट पे आई, पर तब
1: आलिया वो आपके जैसी नहीं, आप उनके जैसी हैं। चिकन और एग, व्हाट केम फर्स्ट? मेरे हिसाब से चिकन। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस।
4: पर दीदी, आर एंटरटेनमेंट इज योर एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6
4: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: जी बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है।
1: मैं जब भी आटा गूंथती हूँ तो आटा मेरे हाथ में चिपक जाता है, क्या करूँ?
0: हाथ में चिपक जाता है? सिंपल तो है, क्या क्या करूँ? पैर से आटा गूंथ, हाथ में नहीं चिपकेगा।

शाम शानदार ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 कतर में बॉलीवुड का मिर्ची वाला तड़का इट्स हॉट शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: हाँ जी, पैसा रखे हो, डिपॉजिट करना चाहते हो तो रेट्स बताते हैं। शाम के 5:04 से ज्यादा।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: वैसे तो मैं आपको एक्सचेंज रेट्स रोज बताता हूँ, लेकिन आज कतर सेंट्रल बैंक के उन रेट्स के बारे में बात करूंगा जो करंट मॉनेटरी पॉलिसी फॉर द स्टेट ऑफ कतर है, एंड किस तरह से यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स को मेंटेन किया गया है क्यूसीबी में, कतर सेंट्रल बैंक में। डिपॉजिट रेट की बात करें, लेंडिंग रेट की बात करें या रेपो रेट की बात करें, क्यूसीबी का डिपॉजिट रेट 3.85% है, इनके लेंडिंग रेट 4.35% है, एंड अगर आप रेपो रेट की बात करें तो वो है 4.10। दुनिया के चंद देशों में पैसों को लेकर इतनी ज्यादा हाहाकार मचा रहता है, लेकिन हमारे कतर में सब कुछ स्मूथ चल रहा है। और रेपो रेट शायद वो रेट होता है जो कि बैंक सेंट्रल बैंक के पास रखते हैं और उसके हिसाब से उनको आने वाले टाइम में इंस्टीट्यूशन पर उनके फाइनेंशियल चीजें हेल्प मिलती है, उन्हें लेंड मिलता है मनी कतर सेंट्रल बैंक से। बिल्कुल मिलाकर ये सारी जो पढ़ाई है ना, डिपॉजिट वाली, लेंडिंग वाली, रेपो रेट वाली, ये इकोनॉमिक्स की पढ़ाई थी, मुझे याद है क्लास 11th 12th में। लेकिन जब ये टीचर पढ़ाते थे मैं सो जाता था, अगर मैं ये सब समझ गया होता ना तो यू नेवर नो आज मैं किसी बड़े बैंक का मैनेजर होता। फिलहाल रेडियो को मैनेज कर रहा हूँ, आपके लिए गाने प्ले कर रहा हूँ, और अभी अगला गाना जो है ना वो बेसिकली इंटरेस्ट के साथ आया है। एक बहुत पहले गाना आया था आंखों से तूने ये क्या कह दिया, अब उसका इंटरेस्ट के साथ 2.0 वर्जन आया है। आइए मिर्ची पे सुना दूँ।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
1: Hello.
2: Hello, Mr. Gotham.
1: कौन बोल
2: रहे हैं? सर, मैं एक्चुअली आज सर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ. मैं सर आज सुना है फिर वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है. मैं जो गाने गाता हूँ ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं.
1: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं.
2: पहले मोहल्ले में हमारे स्नेक निकला था, तो स्नेक का ही घुस गया था, तो मेरे को पहले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू, आजा स्नेक निकाल दे. सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ सर, हर तरह के गाने खा लेता हूँ, लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में. नागिन क्या है सर? नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
1: हाँ, सर कुछ गाके सुनाएगी.
2: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर. वो देखा है एनाकोंडा आपने? एनाकोंडा फिल्म देखी है?
1: एक काम करो, अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ.
2: वही सर, एनाकोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को.
1: एनाकोंडा में कौन से गाने हैं?
2: सर वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं, उसने काम किया एनाकोंडा में, यही फायदे मेरे लिए. एक पेशकश कर रहा हूँ. ताने डोले मेरा माने डोले, मेरे गले का गया गुजार रे, कौन बजाए बांसुरिया. सर बिच्छू वाला, ये बिच्छू मुझे काट खाएगा.
1: सुन ले बात,
2: मेरी बात
1: सुन, पहले बात सुन.
2: हाँ सर.
1: और इसे बंद करिए, बीन बीन जो बजा रहा है तो ये बंद कर रहा
2: है. सर बोलिए,
1: हमारे यहाँ पे इस तरह के घर नहीं चलते, समझ गया ना तू बात?
2: जी सर.
1: और जिसने तुझे नंबर दिया है, क्या किसने नंबर दिया था तुझे?
3: मिस्टर गौतम, इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है. छोटा सा मजाक किया, मुर्गा बन गया आपका.

0: Profit Kissat, only on Mirchi. It's hot.
1: Yep, again.
2: Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
3: Ja Simran, ja jeele apni zindagi. Ja beta, ja.
4: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6
7: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

ये गाना आते ही आंखों के सामने दीपिका पादुकोण ही आ जाती है इस पिक्चर के वीडियो से। हाँ जी, लेकिन फिलहाल दीपिका घर पे परेशान है क्योंकि रणवीर ने उनकी ड्रेसेस पहन ली है और वो दे ही नहीं रहे हैं। कुल मिलाकर वार्डरोब दोनों का एक ही जैसा है ना, मस्त मौला गौरव आपके साथ, लेकिन एक जैसी एक चीज नहीं रहती, वो है रियाल एंड रुपीज का कन्वर्जन। तो अभी क्या रेट से बता देते हैं। आप खुश हैं क्योंकि सैलरी आ गई है, तो चलिए जी घर भेजिए। एक कतरी रियाल के बदले भारतीय मुद्रा में घर भेजेंगे पैसे इंडिया, तो 26.22 INR, 26.22 भारतीय मुद्रा में। वहीं वन कतरी रियाल के बदले श्रीलंकन रुपीस व्हाट यू विल गेट इज 92.21। अगर हम पाकिस्तान रुपीस की बात करें जनाब, वाहिद कतरी रियाल के बदले 76.35 का रेट बाहर की तरफ आपको मिलेगा। आईपीए में आपको ये घर बैठे बैठे मिल जाना है। अगर 76.35 पाकिस्तान रुपीस के बाद हम तपाई को नेपाल रुपीस की बात करें, हजूर एक कतरी रियाल के बदले 41.9 एक का भल छ रेट बाहिनी है जी, 41.91 को रुपाली रुपीस का रेट चौधाई। अगर घर भेजने लाई राइट टाइम छ, अगर इसके बाद हम बांधू बांग्लादेशी टका का बात करेगा दादा एकदम क्लोज तो 34 के करीब हाँ जी, 33.98 तो 33.98 एक टा कतरी रियाल के बांग्लादेशी टाका, तो एटा रेट अच्छे, तो बाड़ी थी के भेजी दो। मस्त मौला गौरव आपके साथ, मिर्ची इट्स हॉट।

0: She can already read what's on your mind. She knows what you are thinking. Coming soon. Stay tuned. Stay tuned. कतर में हैं और ड्राइविंग लाइसेंस भी है। क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की?
1: तो इंतजार खत्म। RSL ग्रुप ऑफ कंपनीज लेकर आया है एक सुनहरा मौका स्टेबल इनकम के साथ।
0: अभी कॉल करें 3100-0813।
2: अरे यार, इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
3: क्योंकि मैंने रिचार्ज किया ओरेडो के योर स्पेशल ऑफर से।
2: योर स्पेशल ऑफर?
3: हाँ, ये रिचार्ज मेरे हाला नंबर के लिए स्पेशली बना हुआ ऑफर है। ज्यादा वैल्यू और वो बेनिफिट्स जो मुझे एक्चुअली चाहिए।
2: ये तो मेरे नॉर्मल रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
3: बिल्कुल, योर स्पेशल ऑफर मेरे लिए सबसे अच्छा रिचार्ज ऑप्शन है।
2: ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बना है खास आपके लिए। अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो।
4: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते हैं। जहाँ खड़े हो जाते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है।
0: और हम जहाँ चल जाते हैं, बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

का पैमाना सिर्फ वहाँ की बड़ी बिल्डिंग्स, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, बल्कि वहाँ काम करने का कैसा माहौल होता है इस पे भी डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही कि कतर दुनिया में इस मामले में नंबर 2 की पोजीशन पर। #974 की वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट जिसे हम कह सकते हैं लेटेस्ट IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस ईयर बुक की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कतर लेबर मार्केट इंडेक्स में दुनिया में सेकंड रैंक की पोजीशन हासिल कर ली है। यस, क्योंकि ये सिर्फ एक रैंकिंग नहीं है, मेरा ये मानना है कि नंबर 2 की पोजीशन इस बात का प्रूफ है कि कतर किस तरह से पूरी दुनिया के टैलेंट को अट्रैक्ट करता है और रिटेन करने के लिए, मतलब उनको अपने पास रखने के लिए लगातार बेहतरी कर रहा होता है, अपने वर्क एटमॉस्फेयर इतना अच्छा बना रहा होता है, उनकी इकोनॉमी को कैसे अच्छा करें, उनके लेबर लॉस को कैसे बेहतर बनाया जाए, इस पर लगातार काम कर रहा है कतर। और एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज ने ही कतर के इस सेकेंड पोजीशन में इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले किया और नेशनल विजन 2030 को अलाइन करते हुए सारे गोल्स को अचीव करता जा रहा है। और ये इस बात का प्रूफ है नंबर 2 पर आना कि कतर लेबर मार्केट इंडेक्स ने दुनिया में ये बता दिया है कि भाई वाकई में क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर बात की जाए सभी लेबर्स की तो बेहतरीन है हमारे कतर में। और अगर आप कतर में रहते हैं और यहां आप काम कर रहे हैं तो यू शुड ऑल्सो फील प्राउड कि आप दुनिया के दूसरे सबसे अच्छे लेबर मार्केट में काम कर रहे हैं, जहां पर आपके लिए बहुत सारी बेहतरी का फॉर्मूला यूज किया जा रहा है और कैसे आपकी लाइफ बेटर से बेहतर, बेहतर से बेहतरीन बने, इस पर काम हो रहा है। थैंक यू टू द हुकूमत ऑफ कतर जो लगातार इस पे काम कर रही है, सारे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से लेकर बाकी सारी मिनिस्ट्रीज को भी दिल से थैंक यू जो हमारी लाइफ को ईजी बनाने के लिए हर वक्त हमारे ही बारे में सोच रही होती है और काम कर रही होती है। 89.6 मिर्ची वन, इस बात पे तो खुद पैसे खरीद के कुनाफा खाने का मन कर रहा है। चलिए आज खा लेंगे मिर्ची सॉर्ट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: Amit Trivedi, studio hai, guitar hai, mahol hai. Ruke kis liye aap?
2: होने दो बतिया सीने में दिल सॉरी वन मोर टेक प्लीज
1: टेक एज मेनी टेक्स एज यू वांट अमित त्रिवेदी हम तो सुनते रहेंगे मिर्ची इट्स हॉट
0: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
3: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं
4: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
5: बार बार
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6
4: FM मिर्ची वन इट्स हॉट

0: बिल्कुल, प्यार ऐसी चीज ही है, हर बार होनी ही चाहिए। क्योंकि जिंदगी में इंसान को कभी कभी बाद में रियलाइज होता है, अरे हम जो प्यार सोचे तो प्यार नहीं था, मिस्टेक थी, असली वाला तो प्यार अब हुआ है, और इस चक्कर में कई बार प्यार हो जाता है। फिलहाल मेरे साथ चल रहा है मेरा शो शाम शानदार।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
0: वैसे आप तो गर्मी का बहाना करके बैठे हैं, लेकिन हमारे कतर के कई सारे मॉल्स ने ठाना है कि गर्मी का बहाना नहीं बनाने देंगे, लोगों को फिट एंड फाइन जरूर रखेंगे। और इसी को लेकर फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर कतर में चल रहा है कतर स्पोर्ट्स फॉर ऑल फेडरेशन द्वारा स्टेप्स चैलेंज इन मॉल्स। यस, एक इनिशिएटिव है जो कि हमारे पूरे कतर की कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं उनको इंकरेज किया जाए कि वो अपनी वॉकिंग हैबिट को बिल्कुल ना बदले। वेदर आउटसाइड भले ही काफी ज्यादा गर्म वाला है, लेकिन एटलीस्ट मॉल के अंदर ही सही 5000 स्टेप्स डेली उन्हें लेने चाहिए। और अलग अलग मॉल्स में ये अंटिल 31st of August कंटिन्यू कर रहा है। अगर आप जाते हैं किसी भी वन ऑफ द पार्टिसिपेटिंग मॉल्स में तो आपको कोई रोकेगा भी नहीं, आप कहिएगा कतर स्पोर्ट्स फॉर ऑल फेडरेशन ने बोला है, हम उसी के चक्कर में आए, 5000 स्टेप हमें पूरा करने दो। वेल, मैं बता दूं दुनिया में बहुत सारे मॉल्स में आप जाके विंडो शॉपिंग करते हैं, लेकिन हमारे कतर में विंडो शॉपिंग भी नहीं करने की जरूरत है, आराम से वॉकिंग कीजिए, कोई आपसे कुछ पूछेगा भी नहीं। इसी उम्मीद में कि आप मॉल में जाएंगे, वॉक करेंगे और अपना 5000 स्टेप तो एटलीस्ट कंटिन्यू करेंगे। मस्त मॉल और ले रहा अलविदा, लौटेगा एक बार फिर से सैटरडे की शाम शानदार में ढेर सारी बातों के लेकर बात, एंड क्या हुआ पूरे हफ्ते खास ये सब कुछ बताएंगे। लेकिन तब तक के लिए आप खजूर चखने हजूर जरूर जाइएगा कल ईस्टर्न स्क्वायर चौक वाकिफ में, वीकेंड पर टाइमिंग बढ़ जाएगी, फ्राइडे सैटरडे ये आपको लेट नाइट 10 बजे तक मिलने वाला है। इस उम्मीद में कि कतर टॉय फेस्टिवल में बच्चे जाएंगे, आप ईस्टर्न स्क्वायर चौक वाकिफ में खजूर खरीद के आएंगे। मस्त मॉल गौरव हावी भी ले रहा है, मां सलाम तथा बाय-बाय, लौटेंगे सैटरडे, तब तक के लिए हबीबी मिर्ची गुल्लक इट्स हॉट।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: क्या बताओ यार, कंपनी इतनी टॉक्सिक हो गई है मेरी। टीम से सब लोग एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं। अब मैं अकेला ही बच गया हूँ, क्या करूँ?
1: अरे मामू, तो तू छोड़ देना तो कंपनी से क्या टॉक्सिसिटी चली जाएगी।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
3: मिर्ची घड़ी में बज गए शाम के 6 एंड यू एंजॉयिंग क्लब मिर्ची।
4: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

0: DJ Bridget.
1: वीकेंड आ गया, बिल्स मंडे के लिए पेंडिंग है, जिम मेंबरशिप सिर्फ डोनेशन बन चुकी है और एक्स अभी भी hey, long time, टाइप कर रहा होगा। इग्नोर एवरीथिंग बिकॉज़ टुनाइट सिर्फ डांस फ्लोर इम्पोर्टेंट है। वेलकम टू क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका। वॉल्यूम फुल, स्ट्रेस नल, लेट्स गो।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: कभी प्यार का एहसास और कभी खुद को दिया हुआ एक खूबसूरत तोहफा. फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स इज बैक एट तनिष्क. रोज पहनने के लिए स्टाइलिश डिजाइन हो या किसी खास मौके के लिए स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी, हर पीस में है तनिष्क का भरोसा और बेहतरीन क्राफ्ट्समैनशिप. यही नहीं, गेट अ फ्री गोल्ड कॉइन ऑन एवरी 3000 रियाल्स स्पेंट ऑन डायमंड परचेसेस. तो आज ही विजिट करें तनिष्क एट लुलु हाइपरमार्केट, ई रिंग रोड एंड दोहा फेस्टिवल सिटी टुडे. Supply.
2: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go, we are gonna go
3: on a ride.
0: Club Mirchi with Oyon Dika and DJ Richard. Only on

मुझसे चाहे आंखों का पैगाम न ले, पर ये मत कहना अरे हो पगले, मुझे देखना तू मेरा नाम न ले, तुझसे मेरा दीन धर्म है, मुझसे

वीकेंड का असली थेरेपी सेशन डांस फ्लोर. यहाँ कोई अपॉइंटमेंट नहीं, सिर्फ गुड म्यूजिक चाहिए. सो क्लब मिर्ची, डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयोंटिका विथ यू. दिस इज योर वीकेंड डेस्टिनेशन.

मानसून की रात नियॉन लाइट्स और फेवरेट गाने, इससे बेटर वीकेंड कॉम्बो हो ही नहीं सकता. सो वेयरएवर यू आर वाइबिंग, बालकनी, टेरेस या लॉन्ग ड्राइव, क्लब मिर्ची इज योर परफेक्ट पार्टी पार्टनर. डीजे रिचर्ड, मिर्ची और योंतिका विथ यू. लेट्स गो.

Rainy nights are made for hot coffee, good company and even better music. अगर कंपनी नहीं है टेंशन किस बात की, क्लब मिर्ची है ना। डीजे रिचर्ड, मिर्ची और योंतिका आपके पक्के दोस्त। लेट्स गो बेबी।

लाइफ को कभी कभी शफल पे छोड़ देना चाहिए, पता नहीं अगला सरप्राइज एक फेवरेट गाना हो या एक अनफॉरगेटेबल मेमोरी। एंजॉय एवरी बीट विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन द काउंट क्लब मिर्ची।

0: Ritchie, only on Ritchie. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: हेलो
2: आशीष जी, आपका एड्रेस क्या है? ये मैं तीसरी गली पे खड़ा हूँ, ये मरानी बाग की तरफ। आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
1: कौन बोल रहे हैं अभी तो बताइए।
2: वो आपका कोई पैकेट है, ये गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। कह रहे थे पूछा उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
1: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो, अभी तो बताओ।
2: मेरे को तो मालूम नहीं, मैं ड्राइवर हूँ।
1: जस्ट बाद लेफ्ट जो जा रही है गली, लाल रंग पेंट हुआ है।
2: अंदर तो आ गया हूँ, इसमें गाड़ी नहीं दिख रही आपको? आप कहाँ खड़े हो पहले भी बताओ ना मेरे को।
1: मैं तो बालकनी में खड़ा हूँ, कैसे पैदल आ रहे हो?
2: मैं तो आ गया हूँ, जिप्सी आ जाएगी, मैं उनको फिर कैसे बताऊँ एड्रेस? वो अंदर आ सकती है, इतनी छोटी तो रोड होगी।
1: कौन कौन आ सकते हैं, किसकी जिप्सी?
2: एक तो समन है आपके नाम का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और पीछे हमारे वो जिप्सी वाले और पुलिस वाले आ रहे हैं, वो आपके घर को रेड वेड मारेंगे।
1: नहीं सर, मैं चक्कर ये, मैं तो अभी घर पे हूँ नहीं।
2: तो मैंने तो सर लैंडलाइन पे किया है फोन।
1: वो भी जो है ना कुछ प्रॉब्लम है, वो
2: आ गए वो भी आ गए हैं, आगे वो भी आ गए। एक दिन होल्ड करिए, आगे होल्ड करिए। फोन घर पे नहीं है?
1: फोन तो घर पे है, लेकिन मतलब घर पे नहीं है। वो क्या, मैं घर पे नहीं हूँ।
2: आगे वो भी आ गए, दूसरी भी गाड़ी आ गई है। पागल थोड़ी बन रहा हूँ यार, यहाँ पे दोनों गाड़ी आ गई है। मिलो यार उनसे, समझ लो, जो रेट वेट मारेंगे उनसे बात करो, मेरे को पता नहीं है। मैं आप ला रहा हूँ,
1: मैं बाद में मिलूंगा आपसे। यहाँ मैं किसी की डेथ में आया हूँ।
2: किसकी डेथ हो गई सर?
1: मेरे भाई की डेथ हो गई।
2: रुकिए आशीष भार्गव, सर आपके फार्म पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स का फार्म है, आपका ब्रदर तो कोई नहीं है, आपके फादर का नेम है, एक बच्चा है उनका, वो आप हो। आप भाई की डेथ कैसे कर रहे हो?
1: भाई की मैं गलत बोल गया, वो अपने फादर की डेथ हो गई। अचानक ऐसे हो गया, रात वो कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई थी, रात ही फोन आ गया था, रात सुबह में उनकी डेथ हो गई, जो 7-8 किलोमीटर दूर है। आप अभी कहाँ रहे हो?
2: मैं कहाँ रहा हूँ,
1: सॉरी आप अभी कहाँ रहो?
2: मेरे को पहले बता देते कि यार ऐसे वो हो गया।
1: ऐसा है ना, ये देखो हम लोग शरीफ आदमी है, हमारे घर कभी ऐसे पुलिस वुलिस नहीं आई भाई। क्या मतलब मेरे से खुश होने नहीं आ रहा, एक तो परेशान हूँ मैं, हर साल का रिटर्न वेटर्न सब फाइल कर देता हूँ। वो भी
2: आशीष, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया। मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा
1: यार।
2: थैंक यू।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
4: इट्स हॉट। Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
5: नहीं, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
6: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
7: कैसे रुक सकता है?
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: 89.6 89.6 FM
11: Mirchi 1. It's hot.
12: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

0: Ritchie, only on Ritchie. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Hello, Ritchie Helpline.
2: Yes, of course. Mirchi Helpline. बोलिए.
1: मेरी ऑफिस में मेरे से बेवकूफ लोगों को ज्यादा सैलरी मिलती है, क्या करूँ?
2: Oh my boy, तो तू ये सोच कि असली बेवकूफ कौन हुआ?
3: साले को खोपड़ी तोड़, साले.

सैटरडे नाइट पे फोन की बैटरी 5% हो सकती है, लेकिन पार्टी एनर्जी 100% होनी चाहिए। लेट्स गो, डीजे रिचर्ड इन द हाउस।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: हेलो
2: बहन जी।
1: हाँ जी।
2: ये एक सेकंड, ये बहन जी हम आपके पड़ोस में रहते हैं। ये मेरा एक्चुअली बच्चा बहुत रो रहा है और मेरी वाइफ का फोन लग नहीं रहा है। वो बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है। अगर
1: आपके घर में कोई नहीं है?
2: नहीं, वाइफ है, वो गई हुई है कहीं। तो आप थोड़ा सा, आपको अगर कुछ मालूम हो तो एक सेकंड बेटे। चुप,
1: आप अपनी वाइफ को फोन करिए ना, उन्हें बुलवाइए जल्दी।
2: नहीं नहीं, मैं उनको ही फोन कर रहा हूँ। एक सेकंड। आली है मामा आएंगी, मामा आएंगी। एक सेकंड बहन जी, आप होल्ड करेंगी? एक सेकंड सर। आएंगी मामा, आएंगी, चीजी लाएंगी बेटे, चीजी लाएंगी। नहीं, चुप हो रहा। आई एम सो सॉरी, आपको भी डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं ऐसे।
1: नहीं, इसमें डायपर पहना है तो चेक करिए, गीला तो नहीं है।
2: एक सेकंड, इधर आओ। हाँ इधर आओ, देखो मामा आ गई, चीजी लाई। हाँ डायपर गीला है बहन जी इसका,
1: उतार लीजिए उसको।
2: एक सेकंड रुकिए। ये इसके गले में अटक रहा है डायपर। एक सेकंड,
1: शायद आप बेब उतार रहे हैं उसका।
2: अच्छा, ये बेब है। एक सेकंड,
1: देखिए सुसु करा होगा उसने। देखिए,
2: हाँ सुसु ही करा है, सुसु करा है। चल,
1: उतार दीजिए।
2: एक सेकंड, उतार दिया। मैं जी, मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा सा कह देंगे, मैं स्पीकर फोन पे लगा देता हूँ, शायद आपकी आवाज से समझ जाए जरा। देखो आंटी कर रही
1: है।
2: क्लैपिंग करो।
1: चुप हो जाओ, पेट दर्द वगैरह ना हो, आप इसको डॉक्टर के पास लेकर जाइए।
2: हाँ, मुझे भी वही याद आ रहा है। नहीं बहन जी, आप सही कह रही हैं। रात को ना इसने वो मुर्गा खा लिया था, जिससे पेट में दर्द हो जाता है और थोड़े बहुत कान खराब हो जाते हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मैंने आपका नंबर डायल किया।
1: और मैं पागल हूँ। ओह नो।
2: अब जरा मेरे साथ प्यार से बोल दीजिए एक बार।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची। It's hot.
4: Yeah, pajak.
5: Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
6: तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
7: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा।
8: सरकार का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM मिर्ची वन।
11: इट्स हॉट
12: लेडीज एंड जेंटलमैन।

क्लब मिर्ची जा रही है डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका आपके साथ. दिस इज द साउंड ऑफ द फ्यूचर. अगर नेबर्स अभी तक कंप्लेन नहीं कर रहे तो शायद वॉल्यूम अभी भी कम है दोस्तों.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: She can already read what's on your mind. She knows what you are thinking. Coming soon. Stay tuned. Stay tuned.
2: यार बजट टाइट है, शॉपिंग कैसे करें?
3: बजट टाइट तो लुलू फैशन स्टोर चलो।
2: क्यों? वहाँ क्या मैजिक हो रहा है?
3: मैजिक नहीं, हाफ पे बैक।
2: ओहो, एक्सप्लेन करो जरा।
3: सिंपल रेडीमेड गार्मेंट्स, साड़ीज, चूड़ीदार्स, फुटवेयर, लेडीज बैग्स और बेबी एक्सेसरीज पे हाफ पे बैक।
2: ओह, मतलब 200 की शॉपिंग पे 100 वापस।
3: बिल्कुल, और वाउचर रिडीम भी इन्हीं कैटेगरीज में कर सकते हो।
4: ये हुई ना स्मार्ट शॉपिंग, लुलू फैशन स्टोर, हाफ पे बैक, शॉपिंग का स्मार्ट तरीका। स्पेंड QAR 200 एंड गेट QAR 100 फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली। लुलू फैशन स्टोर, लिमिटेड पीरियड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। लुलू, व्हेन द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।
5: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
6: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
7: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM मिर्ची वन।
10: इट्स हॉट।
11: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड।
12: क्लब मिर्ची।

स्टेटस जो भी हो, डांस फ्लोर सबको इक्वली हैंडसम और ब्यूटीफुल बना देता है कि नहीं। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड

Ladies and gentlemen, you are still not ready for this.

तो वॉलेट को रेस्ट दो, वरीज को ब्लॉक करो और डांस मूव्स को अनलॉक करो. क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका.

0: amor.
1: Club Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
2: Bollywood Bordal.
3: Only on Mirchi. It's hot.
4: आलिया, आपकी मम्मी सोनी राजदान बड़ी क्यूट है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं राजी के सेट पे वर यू नर्वस और एक्साइटेड टू वर्क अलोंग विद योर मॉम, व्हाट वाज द फीलिंग?
5: यू नो आई वाज वेरी नर्वस, क्योंकि पहले तो मम्मी भी है, बट नंबर वन फर्स्ट माय को एक्टर ऑन सेट, वो मेरी पहली को एक्टर है, मेरी मम्मी नहीं बन सकती. तो मैं नर्वस थी क्योंकि मुझे लगा कि अगर वो नर्वस है तो मैं ज्यादा नर्वस हो जाऊंगी. अगर उनको लाइने शायद नहीं आते हैं तो मैं कैसे कहूंगी कि उनको नहीं आ रहा है. तो आई वाज लाइक, मुझे ऐसा लगता है मैं दो लोगों के लिए एक्टिंग कर रही हूं, यू नो. मैं जब वो पहली बार सेट पे आई, बट तब
4: आलिया, वो आपके जैसी नहीं, आप उनके जैसी हैं. चिकन और एग, व्हाट केम फर्स्ट? मेरे हिसाब से चिकन. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
2: बॉलीवुड बोर्डल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोर्डल,
3: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
6: हेलो शॉप्स, आवर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है. मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं,
7: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा.
6: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं,
8: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा.
6: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो.
9: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है, ना इधर उधर भटकना है. गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट.
10: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाउ. कॉल नाउ 7070-7687.
11: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड.
12: Club Mirchi.

पीपल क्लब मिर्ची जा रही है डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका के साथ. दिस इज द साउंड ऑफ द फ्यूचर. अगर आप डांस नहीं कर रहे तो कम से कम हेड नॉड तो कीजिए. कैलोरीज कंफ्यूज हो जाएंगी कि बर्न होना है या नहीं. लेट्स गो वंस अगेन.

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: या मिर्ची हेल्पलाइन, बताओ क्या प्रॉब्लम है?
0: जब भी मैं मॉल में शॉपिंग करने जाता हूँ, एक चीज लेनी होती है, पांच लेके आ जाता हूँ, क्या करूँ?
1: ये तो गलत है, अगली बार से एक ही लाना, क्योंकि पांच लेकर पकड़े जाओगे तो मॉल वाले चोर समझकर मारेंगे।

बैक डीजे रिचर्डन मिर्ची और योंतिका आपके साथ। वीकेंड का रूल नंबर वन, जो स्टेप नहीं आता उसको कॉन्फिडेंस के साथ करो, लोग कोरियोग्राफी समझ लेंगे। लेट्स गो।

बस एक लास्ट सॉन्ग उतना ही झूठ है जितना मैं 5 मिनट्स में रेडी हो जाऊंगी। क्लब मिर्ची में डीजे रिचर्ड मिर्ची ओयो देगा।

0: I work out.
1: Club Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
2: यार बजट टाइट है, शॉपिंग कैसे करें?
3: बजट टाइट तो लुलू फैशन स्टोर चलो।
2: क्यों? वहाँ क्या मैजिक हो रहा है?
3: मैजिक नहीं, हाफ पे बैक।
2: ओहो, एक्सप्लेन करो जरा।
3: सिंपल रेडीमेड गार्मेंट्स, साड़ीज, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग्स और बेबी एक्सेसरीज पे हाफ पे बैक।
2: ओह, मतलब 200 की शॉपिंग पे 100 वापस।
3: बिल्कुल, और वाउचर रिडीम भी इन्हीं कैटेगरीज में कर सकते हो।
4: ये हुई ना स्मार्ट शॉपिंग, लुलू फैशन स्टोर, हाफ पे बैक, शॉपिंग का स्मार्ट तरीका। स्पेंड QAR 200 एंड गेट QAR 100 फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली। लुलू फैशन स्टोर, लिमिटेड पीरियड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। लुलू, व्हेन द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।
5: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष।
6: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
7: 89.6
8: FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।
9: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो
10: on a ride.

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसलिए मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: काउंट डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सब।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Bordal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bordal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: हाल ही में रवि किशन ने जो होम फ्रॉम वर्क की बात छेड़ी है, मुझे ऐसा लगता है कि रवि किशन जेन्युइनली एक फनी इंसान है। तृप्ति डिमरी, आपको क्या लगता है?
4: He is just too funny. Like whatever he says, it's funny. He's कुछ लोग होते हैं ना जिनमें ह्यूमर इनबिल्ट होता है. I think he is one of those people.
3: तृप्ति डिमरी spilling some truth bombs on Mirchi. It's hot.
1: Bollywood Bordal.
2: Bollywood, Bollywood, Bollywood Bordal. Only on Mirchi. It's hot.
5: Ladies and gentlemen.

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: अरे बोल ना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
1: क्या बताओ यार, कंपनी इतनी टॉक्सिक हो गई है मेरी, टीम से सब लोग एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं, अब मैं अकेला ही बच गया हूँ, क्या करूँ?
2: अरे मामू तो तू छोड़ देना, तो कंपनी से क्या टॉक्सिसिटी चली जाएगी।
3: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
4: मिर्ची घड़ी में बच गए 9।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbala. Burga, burga. Navidvala, burga. Mirchi, burga.
3: Hello, Mr. Gotham. Sir, मैं actually आज से रहे हुए request कर रहा था. मैं आज सुन रहा फिर वो singing winging सिखाते हैं sir. तो sir गाने का थोड़ा शौक है. मैं जो गाने गाता हूँ ना वो sir थोड़े different होते हैं.
4: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं.
3: पहले मोहल्ले में हमारे स्नेक निकला था. तो स्नेक का ही घुस गया था. तो मेरे को पहले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू आजा स्नेक निकाल दे. सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ सर हर तरह के गाने खा लेता हूँ लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में. सर नागिन क्या है सर नगीना फिल्म देखी आपने नगीना फिल्म देखी है सर आपने.
4: हाँ सर कुछ गाके सुनाएगा.
3: हाँ वही सर नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर वो देखा है ना कोंडा आपने ना कोंडा फिल्म देखी है.
4: अरे काम करो अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ उसको
3: भेज. वही सर है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को.
4: कोंडा में कौन से गाने
3: सर वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज वो उसके अच्छे लगते हैं. उसने काम किया ना कोंडा में यही बात है मेरे लिए. मैं एक पेशकश कर रहा हूँ ताने डोले मेरा माने डोले मेरे गले का गया गुजार रे कौन बताए बांसुरिया. सर बिच्छू वाला ये बिच्छू मुझे काट खाएगा.
4: सुन ले बात मेरी सुन पहले बात सुन.
3: हाँ सर
4: और बंद करिए बीन जो बजा रहा है ये बंद कर रहा
3: है. सर बोलिए
4: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते समझ गया ना तू बात है.
3: जी सर
4: और जिसने भी ये नंबर दिया है क्या किसने नंबर दिया था तुझे.
5: मिस्टर गौतम इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं बहुत मुश्किल से मिलता है. मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ. मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता. आप रेडियो मिर्ची पे हैं दिल्ली आपको सुन रही है. छोटा सा मजाक किया मुर्गा बन गया आपका.

0: Lead के साथ only on Mirchi. It's hot.
1: Yep, again.
2: हाय सर।
0: ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
3: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड।

Welcome back, people. Club Mirchi जा रही है DJ Richard and Mirchi Oyontika के साथ. This is the sound of the future. अगर आप डांस नहीं कर रहे तो कम से कम हेड नॉड तो कीजिए. कैलोरीज कंफ्यूज हो जाएंगी कि बर्न होना है या नहीं. Let's go.

घंटा असली थेरेपी सेशन डांस फ्लोर। यहाँ कोई अपॉइंटमेंट नहीं, सिर्फ गुड म्यूजिक चाहिए। सो क्लब मिर्ची, डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका विथ यू। दिस इज योर वीकेंड डेस्टिनेशन।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: She can already read what's on your mind. She knows what you are thinking. Coming soon. Stay tuned.
2: Stay tuned.
3: दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
4: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
5: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
6: खूब मिलेगा, मिलेगा।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM, मिर्ची वन।
9: इट्स हॉट।
10: लेडीज एंड जेंटलमैन,

0: down in 3, 2, 1.
1: का गोल्डन रूल अगर स्टेप गलत हो गया है तो स्माइल कर दो, लोग समझेंगे यही है नया ट्रेंड बेबी। लव मिर्ची विद डीजे रिचर्ड, मिर्ची और योंतिका।

0: get ready.
1: Las palmas arriba.
2: वीकेंड पे फिटनेस बैंड भी कंफ्यूज हो जाता है, वॉकिंग काउंट करे या डांस का वर्ल्ड रिकॉर्ड। क्लब में अचीवमेंट

सीखिए, डांस स्टेप्स भूल जाएंगे, गाने चेंज हो जाएंगे, लेकिन जो वीकेंड्स दिल से जिए जाते हैं वो याद ही रह जाते हैं। मैं हूँ ओयोंतिका, डीजे रिचर्ड को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना मत भूलिए। डांस सेफ, ड्राइव सेफ, और अगले वीकेंड फिर मिलेंगे ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड मिर्ची ओयोंतिका। टाटा।

0: DJ Bridget.
1: वीकेंड आ गया, बिल्स मंडे के लिए पेंडिंग है, जिम मेंबरशिप सिर्फ डोनेशन बन चुकी है और एक्स अभी भी हे लॉन्ग टाइम टाइप कर रहा होगा. इग्नोर एवरीथिंग बिकॉज़ टुनाइट सिर्फ डांस फ्लोर इम्पोर्टेंट है. वेलकम टू क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका. वॉल्यूम फुल, स्ट्रेस नल, लेट्स गो.

वीकेंड का असली थेरेपी सेशन डांस फ्लोर। यहाँ कोई अपॉइंटमेंट नहीं, सिर्फ गुड म्यूजिक चाहिए। सो क्लब मिर्ची, डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयोंटिका विथ यू। दिस इज योर वीकेंड डेस्टिनेशन।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: She can already read what's on your mind. She knows what you are thinking. Coming soon. Stay tuned. Stay tuned.
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
3: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन,
5: इट्स हॉट। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर

मिर्ची में वेलकम बैक डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका आपके साथ। वीकेंड का रूल नंबर वन, जो स्टेप नहीं आता उसको कॉन्फिडेंस के साथ करो, लोग कोरियोग्राफी समझ लेंगे। लेट्स गो।

जो लोग बोलते हैं मैं सिर्फ दो गाने सुन के उठ जाऊंगा, वो ही सुबह तक डीजे को सॉन्ग रिक्वेस्ट भेजते रहते हैं। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची, ओ योर्टिका, वंस अगेन लेट्स गो।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Bordal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bordal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: Amit Trivedi, studio hai, guitar hai, mahol hai. Rukiye kis liye hain aap?
4: होने दो बतिया सीने में दिल सॉरी वन मोर टेक प्लीज
3: टेक एज मेनी टेक्स एज यू वांट अमित त्रिवेदी हम तो सुनते रहेंगे मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
5: लेडीज एंड जेंटलमैन
2: Cheap.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Hello, Mirchi Helpline?
2: जी बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है?
1: मैं जब भी आटा गूंथती हूँ तो आटा मेरे हाथ में चिपक जाता है, क्या करूँ?
2: हाथ में चिपक जाता है? सिंपल तो है, क्या क्या करूँ? पैर से आटा गूंथ, हाथ में नहीं चिपकेगा।

मानसून की रात नियॉन लाइट्स और फेवरेट गाने, इससे बेटर वीकेंड कॉम्बो हो ही नहीं सकता. सो वेयरएवर यू आर वाइबिंग, बालकनी, टेरेस या लॉन्ग ड्राइव, क्लब मिर्ची इज योर परफेक्ट पार्टी पार्टनर. डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका विथ यू. लेट्स गो.

Rainy nights are made for hot coffee, good company and even better music. अगर कंपनी नहीं है, टेंशन किस बात की? क्लब मिर्ची है ना? DJ Richard, मिर्ची और योंतिका, आपके पक्के दोस्त. Let's go, baby.

बारिश खिड़की पे बजती है, कभी बेस स्पीकर पे, और जब दोनों एक साथ बजते हैं, वीकेंड ऑटोमेटिकली लेजेंडरी बन जाता है। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची, ऑन द काउंट, लव मिर्ची टुनाइट।

लाइफ को कभी कभी शफल पे छोड़ देना चाहिए, पता नहीं अगला सरप्राइज एक फेवरेट गाना हो या एक अनफॉरगेटेबल मेमोरी। एंजॉय एवरी बीट विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन क्लब मिर्ची।

अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल

ಧನ್ವಾ ಕೆ ಪಗ ಘುಂಗರೂ

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: Iskabana, uskabana, sakabana. Murga, murga. Navid wala murga. Mirchi murga.
3: Hello.
4: Hello.
3: Hello.
4: Hello, Benji.
3: हाँ जी,
4: ये एक सेकंड, ये बहन जी, हम आपके पड़ोस में रहते हैं। ये मेरा एक्चुअली बच्चा बहुत रो रहा है और मेरी वाइफ का फोन लग नहीं रहा है। वो बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है। अगर
3: आप, आपके घर में कोई नहीं है क्या?
4: नहीं, वाइफ है, वो गई हुई है कहीं। तो आप थोड़ा सा, आपको अगर कुछ मालूम हो तो एक सेकंड
3: अपनी वाइफ को फोन करिए ना, उन्हें बुलवाइए।
4: नहीं नहीं, मैं उनको ही फोन कर रहा हूँ। एक सेकंड, आली है, मामा आएंगी, मामा आएंगी। एक सेकंड बहन जी, आप होल्ड करेंगी? एक सेकंड सर, आएंगी मामा, आएंगी, चीजी लाएंगी बेटो, चीजी लाएंगी। नहीं, चुप हो रहा। आई एम सो सॉरी, आपको भी डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं ऐसे।
3: नहीं, इसमें डायपर पहना है तो चेक करिए, गीला तो नहीं है।
4: एक सेकंड, इधर आओ। हाँ, इधर आओ, देखो, मामा आ गई, चीजी लाई। हाँ, डायपर गीला है बहन जी, इसका
3: उतार लीजिए।
4: एक सेकंड रुकिए। ये इसके गले में अटक रहा है डायपर। एक सेकंड,
3: शायद आप बेब उतार रहे हैं उसका।
4: अच्छा, ये बेब है। एक सेकंड,
3: देखिए सुसु करा होगा उसमें, देखिए।
4: हाँ, सुसु ही करा। चल,
3: उतार दीजिए, एक सेकंड।
4: उतार दिया। मैं जी, मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा सा कह देंगे, मैं स्पीकर फोन पे लगा देता हूँ, शायद आपकी आवाज से समझ आए जरा। देखो आंटी कर रही है।
3: क्लैपिंग करो। चुप हो जाओ, पेट दर्द वगैरह ना हो, आप इसको डॉक्टर के पास लेकर जाइए।
4: हाँ, मुझे भी वही याद आ रहा है। नहीं बहन जी, आप सही कह रही हैं। रात को ना इसने वो मुर्गा खा लिया था, जिससे पेट में दर्द हो जाता है और थोड़े बहुत कान खराब हो जाते हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मैंने आपका नंबर डायल किया।
3: और मैं पागल हूँ। ओह नो।
4: अब जरा मेरे साथ प्यार से बोल दीजिए एक बार।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
5: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
6: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.
9: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

Yes, Club Mirchi जा रही है DJ Richard and Mirchi और योंतिका आपके साथ. This is the sound of the future. अगर neighbors अभी तक complain नहीं कर रहे तो शायद volume अभी भी कम है दोस्तों.

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: She can already read what's on your mind. She knows what you are thinking. Coming soon. Stay tuned.
2: Stay tuned.
3: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
4: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
5: बहुत कुछ होगा।
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
8: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

Ladies and gentlemen, you are still not ready for this.

तो वॉलेट को रेस्ट दो, वरीज को ब्लॉक करो और डांस मूव्स को अनलॉक करो. क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका.

0: amor. Club Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal. Only on Mirchi. It's hot.
2: माधुरी जी, आप अपने ग्रेस, एलिगेंस, पॉइज, अदा, इन सब के लिए जानी जाती हैं। असली में माधुरी दीक्षित कौन है?
3: The elegance and this and that, everything inside is me is like a mad person. And I love mad comedies. And I love these kind of situations which are like larger than life. वो कुछ अजीब सा हो रहा है इनके साथ. अजीब से कैरेक्टर्स हैं सब. You know, सब पागल, unhinged kind of characters.
2: अब समझी, इसीलिए लोग प्यार से आपको मैड्स भी बुलाते हैं. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: नहीं, बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
5: अरे, पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
6: कैसे रुक सकता है?
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM Mirchi 1. It's hot.
8: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

people, Club Mirchi जा रही है DJ Richard and Mirchi और Yontika के साथ. This is the sound of the future. अगर आप डांस नहीं कर रहे तो कम से कम हेड नॉड तो कीजिए. कैलोरीज कंफ्यूज हो जाएंगी कि बर्न होना है या नहीं. Let's go once again.

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: यस ऑफ कोर्स, मिर्ची हेल्पलाइन बोलिए।
2: मेरी ऑफिस में मेरे से बेवकूफ लोगों को ज्यादा सैलरी मिलती है, क्या करूँ?
1: ओ माय बॉय, तो तू ये सोच कि असली बेवकूफ कौन हुआ?
3: साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले का।
4: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go, we are...

बारिश का मौसम है, कभी रोमांटिक कभी ड्रामेटिक, लेकिन प्लेलिस्ट हमारी सिर्फ फैंटास्टिक, सो डोंट टच दैट डायल, क्योंकि अभी पार्टी का लेवल और भी हाई होने वाला है। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयंतिका विद यू एंड दिस इज द साउंड ऑफ द फ्यूचर क्लब मिर्ची।

मिर्ची में वेलकम बैक डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंते का आपके साथ वीकेंड का रूल नंबर वन, जो स्टेप नहीं आता उसको कॉन्फिडेंस के साथ करो, लोग कोरियोग्राफी समझ लेंगे। लेट्स गो।

बस एक लास्ट सॉन्ग उतना ही झूठ है जितना मैं 5 मिनट्स में रेडी हो जाऊंगी। क्लब मिर्ची मिर्ची ऑयो देगा।

0: I work out.
1: Club Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
2: Mirchi.
3: हेलो
4: आशीष जी, आपका एड्रेस क्या है? ये मैं तीसरी गली पे खड़ा हूँ, ये मरानी बाग की तरफ। आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
3: कौन बोल रहे हैं? अभी तो बताइए।
4: वो आपका कोई पैकेट है, ये गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। कह रहे थे पहुंचा उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
3: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो, अभी तो बताओ।
4: मेरे को तो मालूम नहीं, मैं ड्राइवर हूँ।
3: जस्ट बाद लेफ्ट जो जा रही है गली, लाल रंग पेंट हुआ है।
4: अंदर तो आ गया हूँ, इसमें गाड़ी नहीं दिख रही आपको? आपका घटो पहले भी बताओ ना मेरे को।
3: मैं तो बालकनी में खड़ा, आप कैसे पैदल आ रहे हो?
4: मैं तो आ गया हूँ, जिप्सी आ जाएगी, मैं उनको फिर कैसे बताऊँ एड्रेस? वो अंदर आ सकती है, इतनी छोटी तो रोड होगी।
3: कौन कौन आ सकते हैं, किसकी जिप्सी?
4: एक तो समन है आपके नाम का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और पीछे हमारे वो जिप्सी वाले और पुलिस वाले आ रहे हैं, वो आपके घर को रेड वेड मारेंगे।
3: नहीं सर, मैं चक्कर ये, मैं तो अभी घर पे हूँ नहीं।
4: तो मैंने तो सर लैंडलाइन पे किया है फोन।
3: वो भी जो है ना कुछ प्रॉब्लम है, वो
4: आ गए वो भी आ गए हैं, आगे वो भी आ गए। एक दिन होल्ड करिए, आगे होल्ड करिए। फोन घर पे नहीं है?
3: फोन तो घर पे है, लेकिन मतलब घर पे नहीं है। वो क्या, मैं घर पे नहीं हूँ।
4: आगे वो भी आ गए, दूसरी भी गाड़ी आ गई है। पागल थोड़ी बन रहा हूँ यार, यहाँ पे दोनों गाड़ी आ गई है। मिलो यार उनसे, समझ लो जो रेड वेड मारेंगे उनसे बात करो, मेरे को पता नहीं है। मैं आप पहला रहा हूँ,
3: मैं बाद में मिलूंगा आपसे। यहाँ मैं किसी की डेथ में आया हूँ।
4: किसकी डेथ हो गई सर?
3: वो मेरे भाई की डेथ हो गई।
4: रुकिए आशीष भार्गव, सर आपके फार्म पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स का फार्म है, आपका ब्रदर तो कोई नहीं है, आपके फादर का नेम है, एक बच्चा है उनका, वो आप हो। आप भाई की डेथ कैसे कर रहे हो?
3: भाई की मैं गलत बोल गया, वो अपने फादर की डेथ हो गई। अचानक ऐसे हो गया, रात वो कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई थी, रात ही फोन आ गया था, रात सुबह में उनकी डेथ हो गई, जो 7-8 किलोमीटर दूर है। आप अभी कहाँ पर रहे हो?
4: मैं कहाँ पर हूँ,
3: सॉरी आप अभी कहाँ पर हो?
4: मेरे को पहले बता देते कि यार ऐसे वो हो गया।
3: ऐसा है ना, ये देखो हम लोग शरीफ आदमी है, हमारे घर कभी ऐसे पुलिस वुलिस नहीं आई भाई। क्या मतलब मेरे से खुश होने नहीं आ रहा, परेशान हूँ मैं।
4: आशीष, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया। मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा
3: यार।
4: थैंक यू।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
6: तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
7: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
9: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.
10: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: आलिया आपकी मम्मी सोनी राजदान बड़ी क्यूट है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं राजी के सेट पे वर यू नर्वस और एक्साइटेड टू वर्क अलोंग विद योर मॉम, व्हाट वाज द फीलिंग?
4: यू नो आई वाज वेरी नर्वस क्योंकि पहले तो मम्मी भी है, बट नंबर वन फर्स्ट माय को एक्टर ऑन सेट, वो मेरी पहली को एक्टर है, मेरी मम्मी नहीं बन सकती, तो मैं नर्वस थी क्योंकि मुझे लगा कि अगर वो नर्वस है तो मैं ज्यादा नर्वस हो जाऊंगी, अगर उनको लाइनें शायद नहीं आते हैं तो मैं कैसे कहूंगी कि उनको नहीं आ रहा है, तो आई वाज लाइक मुझे ऐसा लगता है मैं दो लोगों के लिए एक्टिंग कर रही हूं, मैं जब वो पहली बार सेट पे आई, बट तब
3: आलिया वो आपके जैसी नहीं, आप उनके जैसी हैं। चिकन और एग, व्हाट केम फर्स्ट? मेरे हिसाब से चिकन। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल्डाल,
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल,
5: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: लेडीज एंड जेंटलमैन,
7: with Oyon Deka and T.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Hello, Mirchi Helpline?
2: Yeah. Mirchi Helpline. बताओ क्या प्रॉब्लम है हु?
1: जब भी मैं मॉल में शॉपिंग करने जाता हूँ, एक चीज लेनी होती है, पांच लेके आ जाता हूँ, क्या करूँ?
2: ये तो गलत है हु? अगली बार से एक ही लाना, क्योंकि पांच लेकर पकड़े जाओगे हु? तो मॉल वाले चोर समझकर मारेंगे।

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Murga, murga. Navidwala, murga. Mirchi, murga.
2: Hello,
3: Mr. Gotham. Sir, I actually asked a request for the time. I asked for that for singing, winging, sikhate hai, sir. So, sir, gaane ka thoda shauk hai. Main jo gaane gaata hu na, wo sir thode different hote hain.
2: Aise kaise bol sakta hu jab tak aapko sunayenge nahi?
3: Pehle mohalle mein mere snake nikla tha. तो स्नेक का ही घुस गया था तो मेरे को पहले वाले बोलते हैं कि भैया आजा तू आजा स्नेक निकाल दे सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ सर हर तरह के गाने खा लेता हूँ लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में सर नागिन क्या है सर नगीना फिल्म देखी आपने नगीना नगीना फिल्म देखी है सर आपने
2: सर कुछ गा के सुनाएगा
3: हाँ वही सर नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर वो देखा है एनाकोंडा आपने एनाकोंडा फिल्म देखी है
2: अरे काम करो अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ सुबह
3: वही सर एनाकोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को
2: एनाकोंडा में कौन से गाने हैं
3: सर वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज वो उसके अच्छे लगते हैं उसने काम किया एनाकोंडा में यही बात है मेरे लिए मैं एक पेशकश कर रहा हूँ तने डोले मेरा मन डोले मेरे गले का गया गुजार रे कौन बजाए बांसुरिया सर बिच्छू वाला ये बिच्छू मुझे काट खाएगा
2: सुन ले बात
3: मेरी बात
2: हाँ सुन पहले बात
3: हाँ सर
2: और इसे बंद करिए बीन में जो बजा रहा है तो ये बंद कर रहा
3: है सर बोलिए
2: हमारे यहाँ पे इस तरह के घर नहीं चलते समझ गया ना तू बात है
3: जी सर
2: और जिसने तुझे नंबर दिया है क्या किसने नंबर दिया था तुझे
4: मिस्टर गौतम इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं बहुत मुश्किल से मिलता है मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता आप रेडियो मिर्ची पे हैं दिल्ली आपको सुन रही है छोटा सा मजाक किया है मुर्गा बन गया आपका

वीकेंड का असली थेरेपी सेशन डांस फ्लोर। यहाँ कोई अपॉइंटमेंट नहीं, सिर्फ गुड म्यूजिक चाहिए। सो क्लब मिर्ची, डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयोंटिका विथ यू। दिस इज योर वीकेंड डेस्टिनेशन।

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
7: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसैल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: हाल ही में रवि किशन ने जो होम फ्रॉम वर्क की बात छेड़ी है, मुझे ऐसा लगता है कि रवि किशन जेन्युइनली एक फनी इंसान है। तृप्ति डिमरी, आपको क्या लगता है?
4: He is just too funny. Like whatever he says, it's funny. He's कुछ लोग होते हैं ना जिनमें ह्यूमर इनबिल्ट होता है. I think he is one of those people.
3: तृप्ति डिमरी spilling some truth bombs on Mirchi. It's hot.
1: Bollywood Boldal.
2: Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal. Only on Mirchi. It's hot.
5: Our business is our business, none of your business.
6: पर दीदी, our entertainment is your entertainment. Entertainment,
7: entertainment. Qatar का number one radio station.
8: 89.6
9: FM, Mirchi 1.
10: It's hot.
11: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

सिर्फ दो गाने सुन के उठ जाऊंगा, वो ही सुबह तक डीजे को सॉन्ग रिक्वेस्ट भेजते रहते हैं। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची, ऑल योर थिंग, वंस अगेन लेट्स गो।

0: down in 3, 2, 1.
1: पार्टी का गोल्डन रूल, अगर स्टेप गलत हो गया है तो स्माइल कर दो, लोग समझेंगे यही है नया ट्रेंड बेबी। लव मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका।

0: get ready.
1: La plan más arriba.
2: वीकेंड पे फिटनेस बैंड भी कंफ्यूज हो जाता है, वॉकिंग काउंट करे या डांस का वर्ल्ड रिकॉर्ड, क्लब में चीवन डी

स्टेप्स भूल जाएंगे, गाने चेंज हो जाएंगे, लेकिन जो वीकेंड्स दिल से जिए जाते हैं वो याद ही रह जाते हैं। मैं हूँ ओयोंतिका, डीजे रिचर्ड को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना मत भूलिए। डांस सेफ, ड्राइव सेफ और अगले वीकेंड फिर मिलेंगे ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड मिर्ची ओयोंतिका। टाटा।